मीडियम वेव 205.74 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 मिनट हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी सभा।

0: मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हो रहे हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं अरुण कुमार झा से पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है मिट्टी उर्वरता बढ़ाने के उपाय।
1: आपको यह स्पष्ट करूं कि मृदा उर्वरता है क्या। वास्तव में पौधों की उचित वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के लिए आवश्यक 15 पोषक तत्व की आपूर्ति पौधों को मिट्टी से ही होती है, और मिट्टी में इन पोषक तत्वों को प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसी को मिट्टी की उर्वरता कहते हैं। पहले हमारी मिट्टियों में इन पोषक तत्वों की उपलब्धता का स्तर या तो उच्च था या फिर मध्यम था, किंतु मृदा के अनियंत्रित दोहन के कारण 1950 में सर्वप्रथम नाइट्रोजन की कमी का पता चला, और आज हमारी अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन, स्फुर, पोटेशियम, गंधक, बोरन और जस्ता की कमी हो गई है। यदि मृदा उर्वरता का ह्रास इसी दर से होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फसल उत्पादन के लिए हमें दसियों तरह के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जरा सोचिए कि क्या कोई किसान 10 तरह के उर्वरक डालकर खेती कर पाएगा, और यदि कर भी ले तो फसल उत्पादन की लागत क्या होगी। इसलिए हे अन्नदाता किसान भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि मृदा उर्वरता को टिकाऊ बनाने के लिए आप अविलंब उद्यत हो, अन्यथा आपकी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी। किसान भाइयों, अब आपको यह जानना जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरता को आखिर बचाया कैसे जाए, किंतु इसे जानने के लिए आपको यह जानना भी जरूरी है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक आखिर कौन कौन से हैं, क्योंकि कारण आधारित निवारण के ऊपर जो कुछ हम करते हैं निवारण, वह ज्यादा टिका हुआ करता है। यूं तो मिट्टी की उर्वरता कई चीजों से प्रभावित होती है, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक का मैं जिक्र यहां करना चाहूंगा। पहला कारक है मूल पदार्थ, यानी चट्टान का वह हिस्सा जिससे कि मिट्टी बनी है। यदि मूल पदार्थ में किसी तत्व की कमी है तो मिट्टी में भी उस तत्व की कमी होगी। ऐसी मिट्टी को जैविक खादों से उपचारित कर पोषक तत्व, खास करके उस पोषक तत्व जिसकी वहां पर कमी है, उसकी उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। दूसरा कारक है स्थलाकृति, यानी जमीन की आकृति। ढालू जमीन की तुलना में मैदानी क्षेत्र अधिक उपजाऊ हुआ करता है। तीसरा कारक है मिट्टी की उम्र, यानी कि मिट्टी कितने वर्ष पहले बनी हुई है। पुरानी मिट्टी में पोषक तत्व रिस कर निचली सतह पर चली जाती है, इसीलिए ऐसी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मिट्टी को अक्सर पलटते रहना चाहिए। चौथा कारक है जलवायु। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में घुलनशील पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं और उस पर की मिट्टी, खास करके ऊपर की मिट्टी, वह अनुपजाऊ हो जाया करती है। पांचवा कारक है मिट्टी की गहराई। गहरी मिट्टी उथली मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। छठा कारक है मृदा अपरदान। मृदा अपरदान को मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि किसी भी कारक से, चाहे वायु से चाहे जल से, मिट्टी के कण को एक जगह से दूसरे जगह यदि वो प्रतिस्थापित हो जाता है, चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है वो वहां से हट जाती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मृदा अपरदान को रोकने की आवश्यकता है। यदि हम मृदा अपरदान को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यह करना पड़ेगा कि बीच बीच में विंड ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी जहां पर आपका बगीचा है या खेत है उसके ऊपर जो हवा के प्रवाह को रोकने वाले पेड़ हैं उनको लगाने की आवश्यकता है, और खेत

0: कभी भी खाली मत आप छोड़ें, तब ऐसी स्थिति में आपका जो मृदा अपरदान है उसका दर कम हो जाएगा। सातवां कारक है जल निकास की व्यवस्था। अच्छी जल निकास की व्यवस्था वाली जमीन उपजाऊ हुआ करती है। आठवां कारक है मृदा का पीएच मान। एक चीज मैं स्पष्ट करूं किसान भाइयों कि उदासीन पीएच मान वाली मिट्टी में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता समचीन हुआ करती है, इसीलिए यह मिट्टी आपके लिए ज्यादा अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में आपका उद्देश्य भी यह होना चाहिए कि आपकी मिट्टी का पीएच सदैव उदासीन बना रहे। नौवां कारक है मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा। बड़ा महत्वपूर्ण विषय आ गया किसान भाइयों। जैविक कार्बन समस्त मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नियंत्रित करने का काम करता है। अच्छी मिट्टी उसी को मानते हैं जिसमें जैविक कार्बन का प्रतिशत 0.75% के ऊपर है। यदि जैविक कार्बन ठीक ठाक है तो ऐसी स्थिति में आपकी मिट्टी में समझिए कि जो लाभदायक जीव हैं वह भी अच्छे होंगे, उसके रासायनिक गुण भी अच्छे होंगे, उसमें वायु संचार अच्छा होगा। इसमें
1: अभी आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार बुलेटिन सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
4: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन। आज चिंतन मनन में चिंतन आध्यात्मिक ऊर्जा पर। वाचन स्वर कुसुमाकर दुबे का है।
2: की भूमि रही है और यहाँ एक से बढ़कर एक विचारवान संत हुए हैं। उन्हीं में से एक थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके पास आध्यात्मिक संपदा प्रचुर मात्रा में थी। वे इसका उपयोग भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार और विस्तार में लगाना चाहते थे, लेकिन स्वयं इस हालत में नहीं थे कि सारी दुनिया को घूम सकें। नई पीढ़ी के बुद्धिजीवियों को अपनी क्षमता के आधार पर प्रभावित करना था। इसके लिए परमहंस जी को एक सहायक की आवश्यकता थी। उन्हें विवेकानंद मिले। विवेकानंद को उन्होंने परखा और ये पाया कि ये व्यक्ति प्रामाणिक भी है और सुयोगी भी। उन्होंने निश्चय किया कि इस युवक के लिए चिरसाध्य साधना में लगकर अपनी कमाई के बलबूते वो प्रयोजन सिद्ध करना थोड़ा कठिन होगा। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि उनकी जो शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक उपार्जन उन्होंने किया है, वो सारी विवेकानंद को दे दी जाए। धन संपत्ति कमाने की तरह ही आध्यात्मिक उपार्जन भी है। अगर किसी व्यक्ति ने प्रचुर मात्रा में धन कमाया हो, वैभव कमाया हो, तो वो जिसे चाहे उसे दे सकता है। ये उसकी अपनी मर्जी की बात है। इसी तरह से जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा कमाई हो, उसे कल्याण के लिए खर्च करना चाहता हो, वो किसी योग्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये सोचा कि अगर विवेकानंद स्वयं साधना करके आध्यात्मिक उपार्जन करे तो एक बड़ा कालखंड इस पर खर्च हो जाएगा, एक लंबा समय लग जाएगा और कुछ काम ऐसे हैं जो तत्काल किए जाने योग्य हैं, इनमें देर हो जाएगी। इसीलिए सरल रास्ता यही था कि वे अपनी आध्यात्मिक संपदा हस्तांतरित कर दें। परमहंस जब शरीर त्यागने लगे तो पास ही विवेकानंद बैठे थे। उन्होंने उनके शरीर पर अपना पैर रखा। विवेकानंद के शरीर में बिजली कौंध गई। चकित होकर उन्होंने गुरुदेव की ओर देखा। उत्तर मिला, जो कुछ पास में था सो सब दे दिया, अब इसे अभीष्ट प्रयोजनों में लगाना। मैं इस शरीर से मुक्त हो रहा हूँ, इस काया को ठिकाने लगा देना। विवेकानंद ने वही किया। अमानत को उन्हीं के काम में लगाया। अपनी निज की महत्वाकांक्षा के लिए उसमें से रत्ती भर भी खर्च नहीं किया। वे जब विदेशों में प्रचार के लिए गए, उन्होंने कहा है उन्हें हर घड़ी यही अनुभव होता रहा, कोई दिव्य शक्ति उनकी वाणी और मस्तिष्क पर छाई हुई है और वही बोल रही है। अस्त व्यस्त होती

0: भारतीय संस्कृति में प्राण लौट आए, शक्तिपात सार्थक हुआ। जिस तरह से अपनी सुयोग्य बेटियों को किसी को सौंपते समय पिता बार बार सोचकर यह निश्चय करता है कि कहीं ये बेटी कुपात्र के घर तो नहीं जा रही है, उसी तरह कोई भी गुरु जिसने आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित की है वो बहुत गंभीरता से सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसे प्रदान करता है, उसमें हस्तांतरित करता है जो उसे ठीक से व्यय करे और सदुपयोग करे। वैदिक ऋषि ने कहा था, मैं राज्य नहीं चाहता, न सुख न स्वर्ग न मुक्ति, दूसरों के दुख दूर करने भर की मेरी कामना है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था, जब तक एक भी प्राणी बंधन में बंधा है तब तक उसे मुक्त करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूँगा। ऐसी उदारता आध्यात्मिक चेतना के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है और हमेशा रहेगी।
1: अभी आपने चिंतन मनन में चिंतन सुना आध्यात्मिक ऊर्जा, वाचन स्वर कुसुमाकर दुबे का था। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:10 हो रहे हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में माँ भारती की वंदना, समूह स्वर में ये देश वंदना।

ऋणिये मधुमय देश हमारा, इस कर्ण प्रिय समूह स्वर में देश वंदना के बाद अब गुरुदेव की वंदना।

सद्गुरु जो सत्य की तरफ हमें ले जाए, सत्य जो ईश्वर है, ईश्वर जो अनंत है, अनंत जो कण कण में व्याप्त है, जिनकी सारी चीज़ें सारी बातें अनंत है। कुछ भी कह लें, कितना भी कह लें, कुछ भी सोच लें, कितना भी सोच लें, उनकी लीलाओं का कितना भी दर्शन हो जाए वो कम हो जाता है। इसीलिए तो वेदों ने कहा नएति नएति, अर्थात उनका पार कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता, उनका कोई समापन नहीं है। वो परमात्मा है, वह परमात्मा ही सद्गुरु के रूप में आकर हमारे जीवन को उच्चता अति उच्चता, श्रेष्ठता के श्रेष्ठता तक ले जाने के लिए उद्यत होता है। और फिर जब हमारा समर्पण उनके चरणों में होता है तो वह समय दूर नहीं जब परमात्मा सर्वत्र कण कण में व्याप्त दिख जाते हैं।

सद्गुरु की कृपा हो तो क्या न हो जाए। परमात्मा दर्शन से बढ़कर कोई अभिष्ट नहीं इस सृष्टि में, उनकी कृपा से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। सद्गुरु हमेशा सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। सत्य की प्रेरणा संसार को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने जैसा है, क्योंकि संसार में जितने भी कार्य हैं उनमें सत्य की खोज सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, और ये हो सकता है उस परम पुरुष परमात्मा के नाम स्मरण से, सद्गुरु के चरणों में समर्पण से, और निरंतर परमात्मा के लिए अपने अंदर से करुण पुकार जागृत करने से।

सभी मंत्रों का सार, सब कुछ नाम सुमिरन से ही संभव है। बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, कलयुग केवल हरि

0: भगवान बद्रीनाथ के इस आरती के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है चर्म रोग का उपचार। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश दुबे, भेंटकर्ता कुसुमाकर दुबे।
1: रोग क्या है डॉक्टर साहब और किस किस तरह का है?
2: चर्म रोग शरीर का यह भी एक विकार है
1: जी।
2: इसमें कई एक प्रकार का होते हैं, लेकिन इसमें एक जटिल रोग होता है लिकोडर्मा
1: जी,
2: श्वेत कुष्ठ जिसे कहा जाता है
1: जी।
2: यह एक जटिल रोग है जिसका संभवतः आयुर्वेद और होम्योपैथ में ही इसकी चिकित्सा संभव है।
1: अच्छा, हमने बहुत सारे रोगियों को देखा है जिनको लिकोडर्मा है, और उन लोगों ने बताया कि होम्योपैथ में कभी कभी वो प्रयास किए, लेकिन उनका और बढ़ता ही गया और पूरा शरीर में फैल गया। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं?
2: ऐसा कुछ रोगी को अपना शंका होता है कि चिकित्सक के पास जब वो देखता है यह रोग पहले एक या दो बिंदा में शरीर पर
1: आता
2: अपना संकेत देता है
1: जी,
2: उसके बाद कुछ दिनों तक स्थिर रहता है और इलाज के लिए जब जाता है तो वो समझता है कि यह दो बिंदा ही है, लेकिन यह अंदर अंदर शरीर में मेलानिन की मात्रा नष्ट होते जाता है
1: जी, जी, जी।
2: और इसका आक्रमण अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है।
1: अच्छा।
2: और एकाएक जहां तहां तेजी से बढ़ने लगता है।
1: ओ।
2: तो रोगी को ऐसा लगता है कि जब मैं चिकित्सा में आ गया तो डॉक्टर की दवा के द्वारा मेरा बढ़ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार रोगी नित्य प्रतिदिन अपने क्रियाकर्म को ठीक से रखे, खान पान को अच्छा रखे, तो होम्योपैथ में अचूक इसकी चिकित्सा है और बहुत अच्छा से आराम हो जाता है।
1: तो आपने अपने जीवन में रोगियों को इससे पूरी तरह ठीक होते देखा है?
2: देखा नहीं, खुद किया हूँ मैं
1: जी जी।
2: और एक नहीं अनेकों सैकड़ों रोगी ऐसे हैं
1: अच्छा
2: जो सफेद दाग के ठीक हुए हैं, और हमारी तरह और होम्योपैथ डॉक्टर हैं जिनसे ठीक होता है
1: जी। तो इसके लिए कौन सी दवा आती है होम्योपैथ?
2: यह भी एक लक्षण पैथी है।
1: अच्छा,
2: होम्योपैथी एक लक्षण पैथी है। लक्षण के अनुसार होम्योपैथ चिकित्सक उस दवा का, उस रोगी का चुनाव करता है। ऐसा कोई दवा नहीं है
1: अच्छा
2: कि सभी रोगी को वह दवा दिया जा सके। जैसे बहुत से रोगी को केवल होंठ पर रहता है।
1: हाँ जी जी
2: जी, वो प्रमाणित करता है कि इसके शरीर में सिफिलिस का कोई विष है।
1: अच्छा,
2: तो सिफिलिस ग्रुप का जो दवा होता है उससे आदमी डॉक्टर मिलान करता है और मिलान करके उस दवा का चुनाव करता है। कुछ लोगों का रंग दुधिया रंग का होता है, तो इसमें सोरिनम और कैलिकार्ब निश्चित रूप से यह दवा काम करता है। कुछ लोगों में धब्बेदार होता है, गोल गोल चकते के अनुसार पैसे की तरह, वह सीपिया दवा को इंगित करता है। तो कुछ रंग रूप और आकार भी दवा को चुन लेता है, या चिकित्सक उसके लक्षण को देखकर समझ जाते हैं और उस दवा का चुनाव करते हैं।
1: अच्छा, क्या गलित कुष्ठ का भी उपचार हो जाएगा होम्योपैथ में?
2: गलित कुष्ठ का उपचार भी होम्योपैथ में है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है।
1: अच्छा,
2: और इसमें रोगी और डॉक्टर को धैर्य रख के प्रकृति के क्रियाक्रम को मानते हुए इसका इलाज संभव है।
1: अच्छा, इसके बाद और भी चर्म रोगों में प्रायः देखते हैं किसी किसी को एक्जिमा हो जाता है जो बहुत दिन तक छूट ही नहीं रहा है, उसमें क्या हो सकता है?
2: उसका कारण यह है कि एक्जिमा जब भी किसी को होता है तो एक्जिमा हम लोग देखते हैं कि शरीर पर आ गया, लेकिन वो है मन का खुजली।
1: अच्छा,
2: मन जब बार बार खुजलाते रहता है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना से, तो मन का खुजली होते होते वो तन पर आ जाता है।
1: अच्छा,
2: तब मनुष्य उस पर कोई मलहम लगा देता है कि वो छूट गया, लेकिन वो छूटता नहीं, वो भाग जाता है, वो अंदर चला जाता है। इस प्रकार से बार बार लगाने और खाने से वो रोग जिद्दी रोग हो जाता है।
1: अच्छा,
2: इसलिए जिद्दी रोग को ठीक करने में ज्यादा समय लग जाता है।
1: तो वो भी होम्योपैथ में ठीक हो सकता?
2: बिल्कुल ठीक हो जाता है।
0: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे भेंट वार्ता। विषय था चर्म रोग का उपचार। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश दुबे और भेंटकर्ता कुसुमाकर दुबे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 6:40 हुए हैं। निवेदित है श्री रामचरितमानस गान, मुख्य गायन स्वर उत्तरा केलकर का है।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तविकता बताई। तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसियाकर वो श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मुख्य गायन स्वर उत्तरा केलकर का था, संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आज रसरंग में कलाकार होंगे चेतन कुमार चौबे और कानून की बातें होंगी गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत 7:20 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा RTI, वार्ताकार होंगे श्री संदीप झा। इसके अलावा गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में होगा अखबारों की सुर्खियां, आज का इतिहास, मौसम का मिजाज और रेल आवागमन संबंधी सूचनाओं के साथ साथ फिल्मी नगमों की सौगातें। ये सब कुछ होगा प्रातः 7:00 से 7:55 के बीच कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत। प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार होंगे स्वामी प्रणवानंद। दिन के 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आज आप लोकगीत कार्यक्रम में बासुकी प्रसाद यादव को सुनेंगे। दिन के 11:00 आप श्रोता मित्रों के फ़ोन कॉल्स पर आधारित साप्ताहिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा फ़ोन इन आपकी पसंद। दोपहर 12:00 हमारी शहरी महिला श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे नारी लोक। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में आज आप बलराम दास मिश्र को सुनेंगे। दोपहर 1:00 लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में कलाकार होंगे विनय कुमार शुक्ला। 1:30 पर आज आप सुनेंगे हमारी संताली भाषा के श्रोता मित्रों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जीवन झरना, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 2:30 पर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। दोपहर 3:00 प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में आज आप मधुकर निराले और साथियों को सुनेंगे। 3:20 पर देशभक्ति गीत समूह स्वर में प्रसारित किया जाएगा। 3:25 से संध्या 5:00 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अरुण प्रसारण। संध्या 5:00 कार्यक्रम होगा युवावाणी। 5:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनते हैं। संध्या 6:00 ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम प्रसारित होगा, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे सच्चिदानंद सिंह। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में कलाकार होंगे मृदुला कुमारी मारतंड। रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती। रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल केंद्र से अनुप्रसारित

करेंगे। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में 6:55 होने ही वाले हैं। अब आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और आज इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं, आपका दोस्त रविंद्र। श्रोता मित्रों, मौसम तो अद्भुत है। कभी बहुत अधिक धूप हो जाती है, कभी इतने बादल काले काले घने छाते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मौसम कुछ विशेष हो गया है। ऐसे में सावधानियों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी बेमौसम बरसात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अनायास बरसात की बहुत अधिक अधिकता है, ये जरूर कहा जा सकता है। और ऐसे में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि बिजली कड़कने और हवाओं तेज हवाओं के चलते हानि भी हो सकती है और तेज वर्षा से स्वास्थ्य प्रभावित भी हो सकता है। तो बातें छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज 13 जून के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं दो ऐसे महावीर के बारे में जिन्होंने भारत माता की सरहदों की सुरक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए, मेजर वैवेव गुप्ता और मेजर मनोज तलवार। दो ऐसे सपूत भारत माता के जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लेकर अपने जन्म को सार्थक सिद्ध कर दिया। मेजर विवेक गुप्ता, जिनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1970 को, और उनकी बलिदान गाथा अगर हम जानने की कोशिश करें तो 13 जून 1999 को, आज की ही तिथि को, उन्होंने दुश्मन से लड़ते हुए अपने शरीर त्याग दिए थे। करगिल युद्ध के दौरान 13 जून 1999 को तोलोलिंग टॉप में दुश्मन के ठिकानों पर शुरुआती हमले में मेजर गुप्ता को अपनी कंपनी का नेतृत्व करने का मौका दिया गया था। इस दौरान उन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। युद्ध के दौरान उन्हें 2 लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए दुश्मनों पर हमला जारी रखा और आमने सामने की लड़ाई में कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिए। लेकिन इस बीच दुश्मनों के हमले में वीर गति को प्राप्त हो गए मेजर विवेक गुप्ता। मेजर विवेक गुप्ता की वीरता के चलते ही आज भारत ने तोलोलोंग टॉप पर विजय प्राप्त की। मेजर विवेक गुप्ता को वीरता के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज उनकी शहादत दिवस पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आज 13 जून की ही तिथि को

0: एक और शहादत हुई थी, मेजर विवेक गुप्ता के साथ साथ मेजर मनोज तलवार का। 13 जून 1999 को भारतीय सेना के इस जांबाज सैनिक ने इस धरती को अलविदा कह दिया था। ऐसे वीर सपूत कम ही पैदा होते हैं जो देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछार कर देते हैं, कुछ परवाह नहीं कि हमारे पीछे भी कोई और है या नहीं। मुजफ्फरनगर के मेजर मनोज तलवार 1999 में 13 जून को जब दुश्मनों के नापाक इरादों से रूबरू हुए, जब उन्होंने देखा कि बहुत तेज गति से हमारी तरफ दुश्मन की बटालियन बढ़ी आ रही है, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ शत्रुओं को करारा जवाब दिया और कई सारे दुश्मनों को ढेर करके टुरटक की पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा दिया और वहीं शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज मेजर विवेक गुप्ता और मेजर मनोज तलवार के शहादत दिवस पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शत शत नमन करते हैं। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस पार जानेंगे कैसा रहने वाला है मौसम अगले 5 दिनों के अंदर मौसम सूचनाओं में।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। अब अगले 5 दिनों के मौसम सूचनाओं पर नज़र डालते हैं। ये मौसम सूचना हमें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के एकांश से प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार मौसम जो रहने वाला है अगले 5 दिनों के अंदर, यानी आज 13 जून से लेकर 17 जून के दौरान, दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, जिसकी रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, चलने की संभावना है और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि अपने भागलपुर और बांका के क्षेत्रों में 13-14 जून को भारी बारिश की भी संभावना बताई गई है और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातःवेला में 70 से 80 प्रतिशत तक और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इस अवधि में हवाओं की रफ्तार 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। अभी हम मौसम सूचनाएँ जान रहे थे, अब रेल आवागमन संबंधी सूचनाओं की बारी। ये रेल आवागमन संबंधी सूचनाएं हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई हैं। इसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के आवागमन संबंधी सूचनाओं में सबसे पहली रेलगाड़ी की सूचना, गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर से चलकर जयनगर जाती है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस प्रातः 7:50 पर अपने नियत समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर से चलकर हावड़ा जाती है। कविगुरु एक्सप्रेस प्रातः 7:45 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन आने की सूचना है। गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार से चलकर भागलपुर आती है। प्रातः 8:15 पर अपने नियत समय पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल प्रातः 8:05 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है। ये इस रेलगाड़ी के लिए नियत समय है प्रातः 8:05 पर। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर से चलकर साहेबगंज जाती है पैसेंजर, अपने नियत समय से 8:37 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। गाड़ी संख्या 13403 रांची से चलकर भागलपुर आती है वनांचल एक्सप्रेस, अपने सही समय यानी प्रातः 9 बजे भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर MEMU प्रातः 9:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 13229 गुड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस ये साप्ताहिक रेलगाड़ी है, प्रत्येक शनिवार चलती है। आज ये रेलगाड़ी अपने नियत समय 10:15 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस दोपहर 11:55 पर अपने नियत समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के लिए रवाना होगी। अभी आप रेल आवागम संबंधित सूचनाएँ प्राप्त कर रहे थे। ये सूचनाएं हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई थी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, वक्त एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार रसरंग में हम सुनेंगे चेतन कुमार चौबे को।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: अंतराल के बाद गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चेतन कुमार चौहान से कुछ सुगम संगीत। सबसे पहले सुनते हैं कायम की भक्ति रचना।

अभी आप रसरंग में चेतन कुमार चौबे के सुन रहे हैं। अब आइए इनसे सुनते हैं बिंदु जी की ये भक्ति रचना।

अभी आपने बिंदु जी की रचना सुनी। कलाकार थे चेतन कुमार चौबे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। समय हो चला है 7:19 और 45 सेकेंड। वक्त एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार हम सुनेंगे आज वार्ता। विषय है RTI। वार्ताकार होंगे संदीप झा।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अंतराल के बाद अब आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है आरटीआई। वार्ताकार हैं संदीप कुमार झा।

भारत का संविधान आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु केंद्र एवं राज्य को कानून व एक्ट बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत संसद एवं राज्य के विधानमंडल नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कानून एवं एक्ट बनाती है। इसी क्रम में देश की शासन व्यवस्था एवं सभी क्षेत्रों में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया व लागू किया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बनाया व अधिनियमित किया गया। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ, जिससे सार्वजनिक एवं सरकारी क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ साथ उनकी जवाबदेही भी हो, सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्यप्रणाली में सुधार हो तथा पारदर्शिता के साथ ही उसकी जवाबदेही तय हो। इसमें केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। केंद्र सरकार की सूचना में केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सरकार के ये राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का कोई भी नागरिक किसी भी केंद्र या राज्य के सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्रों एवं विभागों से कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। सूचना मांगने का प्रपत्र क अधिनियम की धारा 3(1) के तहत है। सूचना मांगने के 30 दिनों के अंदर या 30 दिनों तक सूचना मांगने वाले को सूचना देना अनिवार्य है। 30 दिन बाद अधिनियम के तहत प्रथम अपील की जाती है, जिसका प्रपत्र 6 है, जो अधिनियम की धारा 6(1) के तहत है। यदि 30 दिन के अवधि तक प्रथम अपील में सूचना देने में विलंब होता है या नहीं दी जाती है, तो अगले 30 दिन के अंदर द्वितीय अपील, जो केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के लिए राज्य सूचना आयोग में की जाएगी। हर हाल में 90 दिन की अवधि में द्वितीय अपील कर देना अनिवार्य है। पहले यह अवधि 6 माह की थी, संशोधन कर इसे 90 दिन किया गया। सूचना मांगने वाला एक ही विषय में सूचना 150 शब्दों में मांग सकता है। पहले ऐसी बंदिशें नहीं थी। संशोधन कर एक ही विषय की सूचना तथा 150 शब्दों में मांगने का प्रावधान कर दिया गया।

घोषणा के अधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के तहत पढ़ने वाले विषय सूचना के अधिकार में नहीं किए जाएंगे। धारा 8 एवं 9 के प्रावधान सूचना पदाधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह सूचना मांगने वाले को सूचना न उपलब्ध कराने का कारण भी स्पष्ट करे। इस अधिनियम के तहत हर सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्रों के हर विभाग में सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसे करना इस अधिनियम के तहत अनिवार्य है। धारा 8 एवं 9 के साथ ही धारा 8 की उपधारा ज की द्वारा एक प्रावधान यह भी है कि जो सूचना देश की संसद या राज्य के विधानमंडल को देने से मना नहीं किया जा सकता है, वह सूचना किसी भी व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सूचना मांगने प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील का शुल्क ₹10 निर्धारित किया गया है, परंतु केंद्रीय सूचना आयोग तथा केंद्र सरकार के कुछ विभाग अपील व द्वितीय अपील में शुल्क नहीं लेते हैं। यह शुल्क सूचना मांगने वाले को देना होता है। साथ ही सूचना उपलब्ध कराने में प्रति पृष्ठ ₹2 का शुल्क है। सूचना देखने में प्रथम घंटा निशुल्क है, पर उसके बाद के प्रति घंटा ₹5 तय है। उसी प्रकार किसी भी सूचना की सीडी के लिए ₹50 शुल्क निर्धारित है। सूचना मांगने का शुल्क पोस्टल ऑर्डर या राज्य में नॉन जुडिशियल स्टाम्प के द्वारा देय है, जबकि सूचना प्राप्त करने का शुल्क नगद भी देय है। द्वितीय अपील में सूचना न उपलब्ध कराने वाले लोक सूचना पदाधिकारी को अधिकतम ₹25,000 का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है, जो उसके वेतन से कटेगा, या फिर प्रतिदिन ₹250 अर्थदंड का प्रावधान है, जो ₹25,000 से ज्यादा के अवधि के लिए नहीं होगा। साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग लोक सूचना पदाधिकारी के सूचना न देने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उस विभाग को अनुशंसा करेगा। उस विषय की सूचना नहीं मांगा जा सकेगा जो किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य किसी ऐसे अभिकरण में मामला लंबित है। सूचना के अधिकार के प्रथम अपील में सूचना के प्रपत्र क की छायाप्रति प्राप्ति यदि डाक से भेजा गया तो डाक रसीद की छायाप्रति तथा शुल्क की छायाप्रति जैसे पोस्टल ऑर्डर की अधिकृति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उसी तरह द्वितीय अपील में प्रपत्र क की छायाप्रति प्राप्ति की छायाप्रति शुल्क की छायाप्रति साथ ही प्रथम अपील के प्रपत्र छ की छायाप्रति प्रथम अपील के शुल्क व प्राप्ति की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा एवं एक केंद्रीय मंत्री से बनी कमेटी के सलाह पर किया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर यह अन्य जगह भी हो सकता है। सूचना आयुक्त 5 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं तथा दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। इनके कार्य करने की उम्र सीमा 65 वर्ष तय है। यही बात मुख्य सूचना आयुक्त पर भी लागू है। धारा 14 में इनको हटाने का प्रावधान है। धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग के गठन, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें भी 10 सूचना आयुक्त एवं एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा एवं एक कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री द्वारा नामित हो के कमेटी की सलाह पर करते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तथा दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ये 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। धारा 17 में मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य के सूचना आयुक्तों को हटाने का प्रावधान है। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम देश के सामान्य मानवी व जनसाधारण को

शासन के हर क्षेत्र में जानकारी का अधिकार प्रदान करती है। यह अधिनियम सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्रों में पारदर्शिता बरकरार रखकर सरकार

बजकर 29 मिनट और 55 सेकेंड। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। आज फिल्मी नगमों की इस कड़ी में सबसे पहले आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का नगमा। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

अभी आपने सुना नुसरत बद्र का लिखा नगमा, संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने, आवाजें थी उदित नारायण, कविता सुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम देवदास। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब वक्त है आज के अखबारों को टटोलने का। आज के अखबार क्या कहते हैं अगर इस पर हम नजर डालें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी सुर्खी जो आज के अखबारों में, लगभग सभी अखबारों में है, बेगूसराय में हादसा। पटना से प्रशिक्षण से लौट रहे तीनों थानेदार की स्थल पर ही मौत। खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर। मधेपुरा के तीन थानाध्यक्ष समेत चार की मौत। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, सबसे बड़ी सुर्खी। और इसमें विशेष रूप से लिखा गया है, एयरबैग खुला फिर भी नहीं बची जान। रॉड से गेट तोड़कर घायलों को निकाला गया बाहर लेकिन जान नहीं बच पाई। इसमें मधेपुरा के रतवारा थाना अध्यक्ष और इसके अलावा बेलारी थाना अध्यक्ष और चालक की भी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा अखबारों की दूसरी सुर्खी अगर देखें तो बिहार के सीएम ने कहा, भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे जो भी हो नहीं बचेगा, जेल में ही रहेगा। विकास का प्लान, 5,00,000 करोड़ का निवेश, एयरपोर्ट डिफेंस कॉरिडोर भी। आज के अखबारों की ये बड़ी सुर्खी है। इसके अलावा नीट री एग्ज़ाम, 15 मिनट ज़्यादा मिलेंगे समय और रफ वर्क के लिए 4 पेज मिलेगा। 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के लिए कई बदलाव किए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। कुल परीक्षा विंडो 195 मिनट की होगी जो पहले से 15 मिनट ज़्यादा है। एनटीए ने कहा, यह अतिरिक्त समय हस्ताक्षर और निगरानी संबंधी औपचारिकता में लगने वाले समय की भरपाई के लिए है ताकि छात्रों का समय परीक्षा समय प्रभावित ना हो। परीक्षा एजेंसी ने प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए 2 से बढ़ाकर 4 पन्ने कर दिए। लेफ्ट हैंडेड छात्रों के लिए 2 रफ वर्क पेज शुरुआत में और 2 अंत में दिए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू, 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया संकट। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी CTET या TET पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। सिर्फ 3 मौके दिए जाएंगे, 2028 आखिरी डेडलाइन होगा। ये आज के अखबार की सुर्खी है। और इस खबर को विशेष रूप से लिखा गया है, अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए CTET या TET पास करना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसके अलावा आज के अखबारों की सुर्खियों में, रेलवे में छोटी गलती पड़ सकती है भारी, इसके लिए जेल नहीं लगेगी पेनाल्टी। जनविश्वास अधिनियम 2023 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 में किया गया बड़ा बदलाव, महिला कोच में प्रवेश पर भी पेनाल्टी लगेगी। RPF को मिला और अधिक अधिकार शीर्षक से ये खबर लिखी गई है।

इसके अलावा एक खबर है, अब जांच केंद्र पर ही बनेगा वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र। वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए परिवहन विभाग ने PSU 2.0 प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रदूषण जांच केंद्र संचालक केवल अपने अधिकृत केंद्र से ही प्रणाली में लॉगिन कर सकेंगे। नई प्रणाली में केंद्र की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश और देशांतर स्वतः दर्ज होकर अस्थायी रूप से लॉक हो जाएगा। इसके अलावा अखबारों की सुर्खियों में है, सेतु पर बस परिचालन बहाली की मांग, डीएम से मिला संघ, कम क्षमता वाले बसों को अनुमति देने की मांग। विक्रमशिला सेतु पर कम क्षमता वाले बसों को परिचालन के लिए अनुमति के लिए संघ ने डीएम से की मुलाकात, यह अखबारों की सुर्खी है। इसके अलावा शूटर कोच जसपाल राणा का निधन, हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। राणा कॉमनवेल्थ में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी रहे। राणा ने 12 वर्ष की उम्र में पहला राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था 1994 की कॉमनवेल्थ गेम और 1994 के एशियाई खेलों में 25 मीटर सेंटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता था स्वर्ण पदक। इसके अलावा अगर खबरों की सुर्खियों में देखें तो जहाज़ों पर हमला अस्वीकार्य, भारत ने कहा। दूसरी बार तलक हुए अमेरिकी राजनयिक, ओमान तट के पास भारतीय नाविकों वाला जहाज अमेरिकी सेना के कार्रवाई के कारण ध्वस्त हो गया, जिसमें 3 नाविकों की मौत हो गई। इस बारे में भारत ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ये आज का अखबारों की सुर्खियाँ हैं। इसके अलावा संगठित अपराध आर्थिक इकाई पर नकेल कसने को EOU में बनी टीम, BPSC परीक्षा में सेंधमारी करने वाली कंपनी अब ब्लैक लिस्टेड होगी। इसके अलावा राजस्व विभाग हर जिले में बनाएगा स्पेशल सेल, आम लोगों की शिकायतों के बाद विभाग सख्त, वरीय अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर, उनकी संपत्ति 95 लाख करोड़ पार। मस्क की संपत्ति 174 देशों के GDP से भी ज़्यादा। अमेरिका में SpaceX IPO के बम्पर लिस्टिंग। इसके अलावा स्नातक नामांकन की दूसरी मेरिट लिस्ट 18 जून को होगी जारी। इस बार नहीं आएगी तीसरी मेरिट लिस्ट, जो छात्र छूट गए उन्हें 25 जून से ऑन स्पॉट राउंड में मौका मिलेगा। तो ये थी आज के अखबारों की सुर्खियां। अब आइए सुनते हैं एक और नगमा, फिल्म बाजीराव मस्तानी से, आवाज श्रेया घोषाल, वैशाली मार्डे और साथियों की।

0: अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और साथियों को फिल्म बाजीराव मस्तानी में गीत लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीतबद्ध किया था संजय लीला भंसाली ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexus.
3: Hamara dessert aa gaya par hamari champion nahi aayi ab tak.
4: Bill bharne ke pehle to aayegi na.
5: So girls, kya ho raha hai?
6: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
7: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। अब वक्त है आज के इतिहास को टटोलने का। क्या कहते हैं आज के इतिहास के पन्ने, आज की तिथि के बारे में, 13 जून के बारे में अगर हम इसे टटोलते हैं तो 1940 में आज की ही तिथि को यानी 13 जून को जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे जनरल माइकल ओ डायर, जिन्होंने जालियांवाला बाग के लिए ऑर्डर दिया था भारत के महान सपूत उधम सिंह ने, लंदन में जाकर उसे गोली मार दी थी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आज की तिथि को यानी 13 जून को ही लंदन में फांसी दी थी, उधम सिंह को, शहीद उधम सिंह। आज की तिथि को उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बदला को उन्होंने पूरा किया था जनरल माइकल ओ डायर को मारकर। इसके अलावा किम कैंपबेल कनाडा के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी आज की तिथि यानी 1993 में 13 जून को। और 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा समाप्त हो गई थी 13 जून को 2002 में। इसके अलावा अगर हम देखें आज की तिथि को क्या विशेष, तो आज की तिथि को भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का जन्म हुआ था 1994 में 13 जून को। इसके अलावा भारतीय राजनेता पीयूष गोयल का जन्मदिन है 1964 में 13 जून को उनका जन्म हुआ था। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव थे, उनका जन्म हुआ था 1944 में 13 जून को। और प्रसिद्ध हिंदी सिनेमा के गीतकार प्रेम धवन का जन्म हुआ था 13 जून 1930 को। 13 जून 2016 को मुद्रा राक्षस भारत की प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार थे, उनका निधन हो गया था। इसके अलावा प्रसिद्ध गजल गायक मेहदी हसन का 2012 में 13 जून को निधन हुआ था। मेजर मनोज तलवार और मेजर विवेक गुप्ता वीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित ये भारत के दो जांबाज सैनिक, आज उनकी पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है। 13 जून 1999 को करगिल में लड़ते हुए उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। इसके अलावा मणिपुर के भूतपूर्व 7वें मुख्यमंत्री राजकुमार जयचंद्र सिंह का निधन हो गया था 1994 में 13 जून को। भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे विनायक पांडुरंग करमकर, उनका निधन हो गया था 1967 में 13 जून को। तो अभी आज की तिथि को यानी 13 जून के बारे में आज के इतिहास में क्या दर्ज है हम टटोल रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए सुनते हैं एक और नगमा फिल्म जुबैदा से।

गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में जुबैदा फिल्म का नगमा। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का कारवां अब अपने समापन तक आ पहुंचा है। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारी मेल आई डी है phaiarbhagalpur@gmail.com, phaiarbhagalpur@gmail.com। और अगर आप हमें चिट्ठी लिखना चाहते हैं, हमारा पता है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन है 8120001। तो अब आज के इस कार्यक्रम को समेटने की अनुमति चाहता है रविंद्र। नमस्कार।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मीडियम वेव 205.7 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब हम समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में, जहां से आप क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे। तत्पश्चात 8:48 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचारों के लिए आइए शामिल हो।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
7: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
4: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी।

0: कंडक्टर्स तक। 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर

0: इसराइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार तीन कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें तीन भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमरीका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकतदारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकतदारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहाँ वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का 7वां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खुसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली दोतरफा चोटी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जुनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकद कम्युनिटी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस डेस एक्सपोजिशन दी नीस में भारत की अहम इख्तराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां, सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक, मस्नूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खुसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रतिस्लावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म फिको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पिल्ले ग्रिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़िश्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के साथ ताबुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्रतिस्लावा से CM पल्लुरुत्सी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी क्योंकि पहली मर्तबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमशान तकरीब में 500 से ज्यादा मर्द और खवातीन कैडेट्स भारतीय फौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड महज एक फौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान अफसरान के नए सफर के आगाज की अलामत भी होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाजों के लगातार 3 कामयाब तजुर्बों पर मुबारकबाद दी है, जिससे ज्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने वाले कसीर सतही दिफाई निजाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में

0: शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिजाइल तक बैलिस्टिक मिजाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने एम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ खतरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिजाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये निजाम मिजाइलों के उभरते हुए खतरों से निमटने के लिए ताजा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया जिनमें 3 भारतीय मल्लाहों की मौत हो गई थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के झंडे वाले टैंकर एमटी सेटो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है। ये हमले नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। बहरी जहाज के हमले में 24 भारतीय शामिल थे जिनमें से 21 अफराद को बचा लिया गया जबकि दीगर 3 मल्ला पहले लापता करार दिए गए और बाद में उनकी मौत की तस्दीक हो गई। इस वाकये के बाद भारत ने वाशिंगटन के साथ अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया और नई दिल्ली में अमरीका के शॉस डी अफेयर्स को तलब किया। वजारत खारजा ने कहा कि उसने शहरी जहाज रानी के खिलाफ जानलेवा ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर हमले बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत की सेफ्टी सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत को कम करते हैं। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमले के भारतीय अफराद को ले जा रहे मर्चेंट जहाजों पर हमले फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए। जनाब जायसवाल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अपील की है। भारत और बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सरहद पर अमन सुकून और इस्तेहकाम बरकरार रखने के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दरमियान नई दिल्ली के बीएसएफ हेडक्वार्टर में 8 से 11 जून तक डायरेक्टर जनरल सतह की 57वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस ने सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और सरहदी सलामती और सरहदी इंतजाम से मुतालिक बाहमी तशवीश के मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीकैन तालमेल पर मबनी गश्त चौकसी बढ़ाने हकीकी वक्त में मालूमात के तबादले और सरहद पार जराइम नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को तेज करने से मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी तर्ज के मिजाइल निजाम की गैर मामूली कारकर्दगी से भारतीय दिफाई तहकीक और तैयारी को निजाम की बढ़ती ताकत का इजहार होता है। वजीर दिफा ने हैदराबाद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिजाइल कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर डीआरडीओ डीआरडीएल में जदीद तरीन हथियारों के निजाम की इमारत का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की जानिब से तैयार करदा निजाम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने आलमी दिफाई टेक्नोलॉजी इको निजाम में मुकाबला आरई की भारतीय सलाहियत का मुजाहिरा किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: वजीर दिफा ने तेजी से बढ़ती आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इर्तका पजीर जंगी हरबों की नौयत के पस मंजर में कौमी सलामती मफादात की हिफाजत के लिए लचकदारियत और जंग से बाज रखने की सलाहियत हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो एक वसीतर न्यूक्लियाई माहदे के तौर पर ईरान में न्यूक्लियाई ताउन के सिविल प्रोग्राम को तस्लीम करने के लिए तैयार है बशर्ते कि ईरान अपने वो बुनियादी ढांचा मुनहदिम कर दे जिससे वो न्यूक्लियाई हथियार बना सकता है। ये वजाहत कल एक सीनियर इंतजामी अफसर ने की जिसमें एक मुजवजा अमरीका ईरान न्यूक्लियाई माहदे की तफसीलात बताई गई हैं। अफसर ने बताया कि इस माहदे पर महज चंद रोज में ही दस्तखत किए जा सकते हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के तकरारात से मुतालिक तरीक़ेकार का जायजा लेने के लिए भारतीय रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ कल आला सतही जायजा मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग के दौरान जनाब वैष्णव ने ज्यादा शफाफ दुरुस्त और टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम की जरूरत पर जोर दिया।

0: उन्होंने महकमा जाती इम्तिहानात की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड की जानी मुंतकली की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और कहा कि तकर्रुरात के अमल को तेज रफ्तार मौसर और उम्मीदवारों के लिए आसान बनाने के लिए और ज्यादा टैबलेट पर मबनी इम्तिहानात मुतारिफ कराए जाने चाहिए। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में पिछले 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास उसूलों के तहत काबिल जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मुस्तकम बनाने और इसका जश्न मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल में भारत का सकाफती सफर काफी तेज रफ्तार रहा और यह सफर भारत की रवायतों से वाबस्ता नीज दुनिया के लिए काबिल दीद है। काशी विश्वनाथ राहदारी महाकाल लोक प्रोजेक्ट, मां कामाख्या मंदिर की तजदीद, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नो और अयोध्या में राम मंदिर का कयाम मोदी हुकूमत के काबिल जिक्र इकदाम हैं। इनमें एक कदम म्यूजियम ग्रांट स्कीम और सकाफती का कारकर्दगी नीज पैदावार से मुतालिक ग्रांट स्कीम भी है। इन स्कीमों से भारत के तहजीबी विरसे को तहफ़ देने में मदद मिली है और साथ ही साथ सकाफती तख्लीक और समाज के निचले तबके की इसमें शिरकत काबिल जिक्र है। ड्रामे से वाबस्ता यूनियन सोरखाइम्बम शरद चंद्र ने हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर किया कि उसने बड़े माली फ्रेमवर्क के जरिए खित्ते के फनून लतीफा को मजीद मुस्तकम बनाया। आज भारत की ये मालामाल सकाफत न सिर्फ मुल्क में अपने जलवे बखेर रही है बल्कि उसकी रोशनी दुनिया भर में फैल रही है। न्यूज डेस्क से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सिडनी में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला आलमी चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में अमरीका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। मैच की शुरुआत से अमरीका मुकाबले पर हावी रहा। खेल शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबोडुइला ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया। कुछ देर बाद पैराग्वे के डिफेंडर जोस कैसेरस को हार्ड फाउल की बिना पर येलो कार्ड दे दिया गया। इससे पहले मुश्तरक मेजबान कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। कनाडा की जानिब से सैल लेरिन ने जबकि बोस्निया की जानिब से जोवो लुसिक ने 1-1 गोल किए। इसके नतीजे में कनाडा ने फुटबॉल आलमी कप का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाम इनकलाब ने बहरे ओमान में इख्तियाती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय जहाजानों की मौत पर रात खाजा की जानी से एहतियात दर्ज कराने के लिए अमरीकी नाजिम उमूरों को तलब किए जाने से मुतालिक खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रात खाजा ने उन्हें अपनाए हुरमुज में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती के बारे में भारत के खदशात से आगाह किया। इनकलाब ने कांग्रेस के लीडर मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज किए जाने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अदालत ने इस तरह की दरखास्तों पर समाअत न किए जाने का जिक्र करते हुए इसमें किसी तरह की मुदाखलत से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात का सबसे ज़्यादा मनफी असर तरक्की पज़ीर ममालिक पर पड़ता है। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। DRDO ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हुए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। और बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब

0: टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
1: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
0: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय। किशनगढ़ जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्रों और सैटेलाइट टाउनशिप योजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। उन्होंने उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाई जाए। श्री चौधरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय पर बल दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। यह टीम मुख्यालय की आईटी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहकर तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगी। राजस्व कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलावार समीक्षा के दौरान श्री जायसवाल ने यह निर्देश दिए। इधर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और भूमि संबंधी अनियमितताओं के आरोप में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पिछले एक महीने में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 50 अधिकारियों के खिलाफ

0: कार्रवाई की गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि केक की सजावट और मिठाई के डब्बों समेत अन्य खाद्य पैकेट में पिन या तार का इस्तेमाल उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। FSSAI के अनुसार जन स्वास्थ्य को देखते हुए खाद्य उत्पाद व्यापारियों को पैकेट में पिन और तार का उपयोग बंद करना चाहिए। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डॉ. सोमनाथन ने सभी संबंधित हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से परीक्षा का सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन नीट पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहे हैं। वहीं NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना की जांच की प्रगति पर अंतरिम बयान जारी किया है। पिछले साल अहमदाबाद में हुई इस दुखद दुर्घटना को 1 साल पूरा हो गया है। AAIB ने कहा है कि सभी जांच गतिविधियां पूरी होने और आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। इधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना की जांच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुसार पेशेवर तरीके से की जा रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा लोक भवन और उच्च न्यायालय परिसर में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बढ़ती उम्र के लिए योग निर्धारित की गई है। इस थीम के माध्यम से लोगों को बढ़ती उम्र में बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और मानसिक संतुलन के लिए योग अपनाने को प्रेरित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मनरेगा के तहत 990 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश में संचालित हो रही मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सामग्री मद में 73,556 लाख रुपए और प्रशासनिक मद में 1,203 लाख रुपए आवंटित किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। विभाग के अनुसार सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लखीसराय, बांका, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर जिलों में मॉनसून के प्रभाव से अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और जमुई जिले के कुछ भागों में भी मॉनसून ने प्रवेश कर लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है।
3: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे। एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुँचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश में 21 नए पालना घर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत नए पालना घर की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। प्रदेश में पहले से 79 पालना घर संचालित हो रहे हैं। पटना जिले के मसौड़ी थाना क्षेत्र के मणिचक गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अपराधी

की ओर से की गई फायरिंग में मसौढ़ी के थानाध्यक्ष राहुल कुमार और दारोगा संजय कुमार घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के सभी 76,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों की जमीन का डाटा बैंक बनाया जाएगा, साथ ही विद्यालय भवनों और अन्य संरचनाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डाटा बैंक बनाने की जिम्मेदारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पूर्व अधिकारियों को सौंपी जाएगी। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। भारत का पहला मुकाबला कल चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में भ्रष्टाचार कर कोई नहीं बच सकता। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नीट में छात्रों को मिलेंगे अतिरिक्त 15 मिनट। दैनिक भास्कर ने खाड़ी युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर लिखा है, ईरान के साथ युद्ध खत्म, करार जल्द होगा। प्रभात खबर ने मौसम की गतिविधियों को तरजीह देते हुए लिखा है, सूबे में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 17 जिलों में पहुंचा। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, अंतर्राष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा का निधन। आज अखबार लिखता है, बिना रेरा नंबर के खरीदा फ्लैट या प्लॉट तो फंसेगा पैसा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: Дальше.
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रोजा फिल्म के इस नगमे के साथ।

अभी आपने सुना रोजा फिल्म में पीके मिश्रा का लिखा नगमा, संगीतबद्ध किया था अल्लारख रहमान ने, आवाज़ मैंने मिनी की थी, कार्यक्रम है नगमे नए पुराने। अब आइए सुनते हैं हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये नगमा।

अभी आपने सुना तमाशा फिल्म का नगमा, अलका याग्निक, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ें थीं। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने। अब आइए सुनते हैं सुल्तान फिल्म का नगमा। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ है, गीत इरशाद कामिल ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

अभी आपने सुना सुल्तान फिल्म में राहत फ़तेह अली खान को। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सिर्फ तो फिल्म का नगमा। समीर ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, आवाज़ें हैं जसविंदर नरूला, अमीन सावरी, फरीद सावरी और साथियों की।

0: जसविंदर नरूला, अमीन सावरी, फरीद सावरी और साथियों की आवाज़ों में गाए इस नगमे के साथ ही आज का नगमे नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं स्वामी प्रणवानंद। आज इस कार्यक्रम में इनसे आइए सुनते हैं कुछ।

जाते जाते हैं सुमिरन कर ले मन राम नाम दिन नी के बीते जाते हैं।

0: अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में स्वामी प्रणवानंद को सुन रहे हैं। अभी आपने इनसे मीराबाई, तुलसीदास और कबीरदास की भक्ति रचनाएं सुनी। एक अंतराल के बाद हम स्वामी प्रणवानंद से कुछ और भक्ति रचनाएं सुनेंगे।
1: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TLC apply.
0: स्वामी प्रणवानंद से सुगम संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं महर्षि मेही दास की यह भक्ति रचना।
2: बिना गुरु की कृपा

0: अभी आपने सुगम संगीत कार्यक्रम में स्वामी प्रणवानंद को सुना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वीराना फिल्म के इस नगमे के साथ, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया है बप्पी लाहिड़ी ने, आवाज़ सुमन कल्याणपुर की।

अभी आपने वीराना फिल्म में सुमन कल्याणपुर को सुना है। अब आइए सुनते हैं तीसरी कसम फिल्म का नगमा। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, आवाज लता मंगेशकर की है।

अभी आपने सुना तीसरी कसम फिल्म में लता मंगेशकर को गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। अब आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का नगमा। गीत और संगीत रविंद्र जैन ने तैयार किया है, आवाज आशा भोसले की है।

अभी आपने सौदागर फिल्म में रविंद्र संगीत, क्षमा करें, रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया हुआ ये नगमा सुना, आशा भोसले की आवाज़ थी। अब आइए सुनते हैं नागिन फिल्म में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को। गीत वर्मा मलिक ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने सुना मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म का ये नगमा गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का नगमा। शैलेंद्र ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है एस टी वर्मन ने, आवाजें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की।

अभी आपने पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के तहत कुछ पुरानी फिल्मों के नगमे सुने। इस गाने के साथ ही पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का आज का सफ़र हुआ पूरा। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार।

0: आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लोकगीत कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना महेश वाणी। आज लोकगीत में कलाकार थी इंद्राणी सिन्हा। लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने ही वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम फोन इन आपकी पसंद। प्रस्तुत करता है सौरभ कुमार।

0: फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा गानों की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में करवा सकते हैं। साथ ही आप अपनी फरमाइश प्रत्येक शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन सकते हैं। तो लेते हैं हम अपने पहले कॉलर को।
1: हेलो,
2: सौरव भैया जी नमस्ते।
1: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: कोटवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता वर्णो भैया जी।
1: राम स्वरूप जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया जी, आप लोग?
1: हम लोग भी अच्छे हैं। और बताइए अभी क्या चल रहा है?
2: तो भैया अभी तो तैयारी करूंगा फिर सेकंड टूर का, सितम्बर वाला।
1: जी जी,
2: अभी 3 तारीख का आया हूँ, चारों धाम अपना गंगोत्री।

0: के नाम है बद्रीनाथ नेपाल वगैरह से।
1: जी जी क्या बात है।
0: सितंबर गया जी प्रोग्राम की तैयारी चलेगा भैया।
1: जी जी जी तो बद्रीनाथ और नेपाल की आपने यात्रा की है।
0: हाँ जी 24 वर्ष का था भैया, सीतामढ़ी भी गया था, अपना जनकपुर भी गया था।
1: जी रहने वाले आप छत्तीसगढ़ के हैं।
0: हाँ भैया टूर का काम करता हूँ भैया, सवारी इकट्ठा करके घुमाने के लिए ले जाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा तो काफी अच्छी बात है। तो आपने सीता माता का मंदिर भी देखा है।
0: हाँ भैया पहले बस में कंडक्टर था, 20 साल कंडक्टिंग उसको छोड़ने के बाद यही काम कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 12 जून को हम लोग वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाते हैं, यानी बाल श्रम के खिलाफ जो हमारा वैश्विक दिवस है ये, और इसका उद्देश्य जो है चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन करना है। मतलब चाइल्ड लेबर एक दंडनीय अपराध है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। आपने देखा होगा कुछ स्टेट से काफ़ी सारे बच्चों को ले जा करके महानगरों में चाइल्ड लेबर कराया जाता है, और इसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइज ग्रुप सब है। काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि बच्चा चोरी करके भी ले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है। और आप भी अपने आसपास कहीं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर काम करते हुए देखते हैं तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। आप इसकी कंप्लेन, इसकी शिकायत पुलिस केंद्र पे भी कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि चाइल्ड लेबर से हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र का फ्यूचर एक तरह से बर्बाद होता है। वो बच्चा अपना बचपन जी नहीं पाता है
0: तो, उनका भविष्य भी खराब होता है।
1: जी
0: लेकिन ध्यान नहीं दे पाते बच्चे लोग, बचपन से यानी काम कराएंगे तो कहाँ पढ़ाई लिखाई होगा भैया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: आवारा गर्दी हो जाते बच्चे लोग, उनका परवरिश भी सही ढंग से नहीं हो पाता।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे।
0: आज भैया तुमसे अच्छा कौन का है, जन्म जन्म का साथ है निभाने को 700 बार मैंने जन्म लिया।
1: जी तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे।
0: मैं पहले तो रिजो भागलपुर के आरजे भैया लोग है, आप लोग सौरव भैया है आरजे बहुत, उसके बाद मेरा परिवार बड़ा का प्रिय गुप्ता, उसके दो लड़के श्याम गुप्ता से श्याम गुप्ता, लड़की सेकंड नंबर प्रीति जैन, उसके दो लड़के अनंत जैन हंसी जैन, छोटा लड़का अजय गुप्ता, पत्नी का नाम हीरा देवी। उसके बाद रेडियो भागलपुर के जितने भी श्रोता भाई बंधु ग्रुप में अदर उसके साथ इस गीत को सुनेंगे भैया।
1: जी जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना आपको हम जरूर सुनाएंगे, और इस तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
0: जी भैया धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरबिलास जी कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ यीशु कृपा से बहुत अच्छी तरह से सर जी। मौसम भी सुहाना चल रहा है इस समय।
0: क्या बात है, और इस सुहाने मौसम में मानसून ने दस्तक दे दिया है और काफी जगहों पे बारिश प्रारंभ है और काफी जगह धूप भी है और धूप बारिश का भी खेल कहीं जगह चल रहा है।
1: जी बिल्कुल, यहाँ मानसून तो नहीं सक्रिय अभी हुआ है लेकिन बगैर मानसून के बारिश हो रही है। आज दिन में बरस गया, आज रात में ही बरसा था
0: जी। और जो भी हो, अलनीनो इफेक्ट हो जिसके कारण से बरसा हो रही, लेकिन बारिश होना तो आवश्यक है। और लेकिन कई जगहों पे इसी महीने या पिछले महीने काफी भयानक तूफान भी आया और काफी क्षति भी पहुंची है।
1: बहुत नुकसान हो गया तूफान से।
0: जी जी जी, आपको ये कहना चाहेंगे कि 14 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी विश्व रक्तदाता दिवस, और इसका उद्देश्य है रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना।
1: जी सर जी,
0: जी क्योंकि आपका एक रक्तदान जो है काफी लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं और जो रक्तदान के इच्छुक हैं वो जाकर नज़दीकी जो ब्लड डोनेशन जो कैंप वगैरह लगते हैं या सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाकर अपना जो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरी करके आप अपना रक्तदान कर सकते हैं। जी, और सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए कभी कभी, और रक्तदान से कमजोरी वगैरह जो भी होती है वो क्षणिक होती है। जी, और भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है तो इन सभी को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए।
1: जी तो सर जी रक्तदान पे कुछ पंक्तियां बोलूंगा, पहले फरमाइश बता दूं।
0: जी जी जरूर।
1: फिल्म का नाम है अधिकार।
0: जी।
1: जीना तोशी का जिसने राज याना है, काम आदमी का औरों के काम आना।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो सर जी पंक्तियां बोलूं?
0: जी जी जी।
1: विश्व रक्तदान दिवस पर सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद, प्रेषित है उनके प्रति शुभकामनाएं, सदा रहे वो खुशियों से आबाद। फसलों के लिए जिस तरह जरूरी होता पानी, उसी तरह रक्त की एक बूंद देती सबको जिंदगानी। सभी युवाओं से विनम्र निवेदन मेरा, बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, अपने लिए तो हर कोई जीता पर हित में कुछ काम करें। वैसे तो हर दान श्रेष्ठ है किंतु रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं, मन को संतुष्टि मिलती अपार, मिलता समाज में सम्मान सही। सफल जन्म मानव का होता वही जो पर हित में आए काम, जागरूक जब हम सब होंगे देश बनेगा तभी महान, देश बनेगा तभी महान। धन्यवाद सर।
0: क्या बात है, और ये आपने अभी तुरंत रची या पहले से आपको पता था?
1: अभी अभी नहीं, ये पंक्तियां पहले से लिखी, गाना अभी बताया था सर।
0: जी जी, काफी अच्छा लगता है जब भी आपसे बात करते हैं, आप कुछ ना कुछ पंक्तियां दोहराते हैं और काफी एक कार्यक्रम में एक नया बन आ जाता है इससे, और इसी तरह से। जी तो ये गाना आप खुद सुनेंगे अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सभी लाइव सुनेंगे जो इस कार्यक्रम को, सभी को दोस्तों के लिए।
0: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे।
1: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा सर जी, मनोज नामदेव।
1: मनोज जी कैसे हैं आप?
2: बस सर जी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से बढ़िया है सर
1: जी। मनोज जी और बताइए क्या चल रहा है?
2: हाँ सर जी, मेरी छोटी सी शॉप है, एक सिलाई वाली जो मशीन होती है सर, वो चलाता हूँ, टेलर हूँ सर जी।
1: जी जी, और बताइए कि अभी आप दुकान पे हैं या फिर बाहर हैं?
2: नहीं सर, अभी तो मैं अपने शॉप पर ही हूँ और शॉप पर से ही मैं आपको कॉल कर रहा था
1: जी।
2: तो जी कॉल करते करते
1: जी, बहुत अच्छा लगता है आप इतने दूर से फोन करते हैं और आपका एक अंदाज भी निराला है। और जी, और आपसे हम जी
2: सर जी कहें, आपके आकाशवाणी से हमारे श्रोताओं को या खास तौर पे मेरे लिए इतना अपार प्रेम हो चुका है, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि आपके कार्यक्रमों में जब तक हम भागीदारी ना लें, जब तक हमें चैन नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और काफी अच्छी बात कही आपने। और साथ ही आपके माध्यम से हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष 15 जून के दिन हम लोग वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाते हैं, यानी यह दिन वैश्विक दिवस है आपको, जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं उनको प्रति जो लोग बुरी बातें वगैरह बोलते हैं उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट्स का भी इसमें वायलेशन होता है। जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन लोगों को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो पूरे संसार भर में ये एक सामाजिक समस्या है कि बुजुर्गों का जो सम्मान है वो सही ढंग से हो नहीं पाता है। तो उसी के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है कि आप बुजुर्गों का सम्मान करें और उनको भी आराम से अच्छे से सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
2: बिल्कुल सर, बढ़िया बात है ये तो। और मैं तो इस कॉल के जरिए हमारे जितनी भी श्रोता इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं
1: जी,
2: मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने बूढ़े माता पिता हैं, क्योंकि जिनकी मैं माता पिता एक ही बार मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उनको उनका सम्मान करें, जितना हो सके जितना सम्मान करें और उनका जीने का हक उनको पूरा रहे। अब मैं अपनी बता दूं कि मेरे यहाँ पापा हैं, मम्मी हैं, तो अब तक शुरू से और अभी तक अगर पापा ने जो बात कह दी है वो बिल्कुल उनकी बात सिर आंखों पर।
1: जी जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: जी सर जी, आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा आंदोलन, उसमें गाना है कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम।
1: क्या बात है, गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सर, हमारे दोस्त जितने भी मित्र इस प्रोग्राम से जुड़े हैं सबके लिए गाना डेडिकेट, खास तौर पे आपके लिए, भैया मंची नाम दे, माई के नाम दे, राहुल शिवम धासु और समस्त नाम दे परिवार।
1: क्या बात है, तो आपकी पसंद पे खूबसूरत सा गाना आपके तमाम चाहने वालों को और अपने तमाम श्रोताओं को हम जरूर सुनाएंगे। और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल सर।
0: अच्छा, टेकचंद अग्रवाल जी, आप कैसे हैं?
1: सर हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और टेकचंद जी, आप करते क्या हैं?
1: सर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी, तब
1: और 6 से 7 साल हो गए सर मुझे कोल इंडिया से रिटायर हुए।
0: जी, तब अभी आप अपनी दिनचर्या में अपने समय को किस तरह से आप आगे ले जाते हैं प्रतिदिन?
1: बस सर सुबह थोड़ा सा वो मॉर्निंग वॉक वगैरह करना, थोड़ा सा फिर घर के सामने बगीचा उसमें समय देना,
0: जी,
1: और बाकी समय सर फिर अपने परिवार में जो भी कार्य कार्य रहते हैं उसी में अपना समय देते रहते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है, काफ़ी अच्छा है कि आप अपन कहीं कहीं कुछ ना कुछ इंगेज रहते हैं और बाग बगीचे की ध्यान देते हैं, परिवार को समय देते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
1: जी, और
0: और
1: जरूरी है सर ये सब।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कहना चाहेंगे कि 17 जून जो आने वाली है, उस दिन हम लोग वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाते हैं, यानी ये एक वैश्विक दिवस है जो हमारे मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटने का एक दिन है। तो इस
1: जी,
0: दिन लोगों के बीच में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं कि मरुस्थलीकरण जो बढ़ता है उसको रोक के कैसे, और जो सूखा कहीं कहीं जगह पड़ता है तो उससे किस प्रकार से हम लोग जल संचय कर सकते हैं ताकि सूखा ना पड़े, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको किस तरह से हम प्रिजर्व करें, यानी पानी, वर्षा, जल संचयन करें, आप जिसके कारण से ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल का जो स्तर है वो भी हम लोग बचाएं, उसमें भी वृद्धि करें, उनको रिचार्ज करें। तो ये सब को बारे में ये जो है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का दिन है, और प्रत्येक वर्ष यह 17 जून को मनाया जाता है। 1994 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा इसे घोषित किया गया था, और 1995 से पूरे विश्व में मनाया जाता है।
1: सर इसकी समय समय पर थोड़ा सा हमें सूचना अगर मिलते रहे तो
0: जी,
1: कार्यक्रम तो खैर हम लोग सुनते ही रहते हैं और हमारे ग्रुपों के द्वारा माध्यम से भी हमें जानकारी मिल जाती है,
0: जी,
1: लेकिन अगर आप सर समय पे ऐसे जो उत्सव वाले कार्यक्रम लेके आते हैं
0: जी,
1: तो अगर हम तक की ये जानकारी अगर मिले सर तो ये हमारे लिए और हम दूसरों तक पहुंचाने में काफी लाभदायक हो सकते हैं सर।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये पूरा एक सामाजिक स्तर से अगर हम प्रयास करेंगे तो वो प्रयास सबसे बड़ा प्रयास होता है। सरकार
1: बिल्कुल
0: प्रयास
1: बिल्कुल। क्या
0: करती है, लेकिन जब आम जन प्रयास करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ा बात होता है।
1: होता है सर, जब हम लोग 4 दोस्त बैठते हैं तो
0: जी
1: उसमें सर ये चर्चा हम लोग कर सकते हैं कि
0: जी
1: यार
0: जी
1: आज हमारे को कार्यक्रम के माध्यम से ये चीजें जानने को मिली, तो
0: जी जी जी
1: उससे सर उसका प्रचार प्रसार भी होगा
0: जी जी
1: और पर्यावरण को सर इसके लिए हमको लाभ भी मिलेगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर मुझे सुनवा दीजिएगा पड़ोसन फिल्म का गाना,
0: अच्छा, पड़ोसन फिल्म का कौन सा गाना?
1: किशोर कुमार साहब की आवाज में,
0: जी
1: कहना है आज तुमसे पहली है बात।
0: क्या बात है, तो गाना खुद सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहेंगे?
1: बिल्कुल सर, आपको सुनाएंगे, हम सुनेंगे, हमारे सभी श्रोता मित्रों को सुनाइए सर।
0: जी जरूर। तो आपकी पसंद पे एक खूबसूरत सा गाना आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को।

0: नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: परम आदरणीय शरद कुमार साहब, सादर करते हैं, प्यार है नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, और कैसे हैं आप?
1: मानवर, मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आदरणीय शरद कुमार साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ। काफी दिनों के पश्चात आपसे एक बार पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप वार्तालाप करने का। आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, और काफी दिनों बाद सही कहा आपने, हमारी बात हो रही है। और आपसे ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष 15 जून को हम लोग वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं, यानी विश्व वायु दिवस मनाते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, क्योंकि जो वायु शक्ति है, आपने पवन ऊर्जा जानते होंगे, पवन ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
1: जी जी बिल्कुल, आपकी बातों से सहमत हूँ कि इस वर्ष से जो है 15 जून यानी सोमवार को ये दिवस मनाया जाएगा। और विंड एनर्जी जो है बहुत ही साफ सुथरी ऊर्जा होती है। इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो वायु के प्रभाव से ये घूमते हैं

घूमने के साथ ये जनरेटर जुड़े रहते हैं, तो वो जनरेटर चलता है जिसके कारण हमें विद्युत का उत्पादन होता है। इस तरह से हम एक साफ और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करते हैं।

0: साथ सच एनर्जी है वहाँ
1: जी जी
0: की।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मानवर, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गीत,
1: जी गीत फिल्म का कौन सा गाना?
0: जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। महेंद्र कपूर साहब के साथ में लता जी ने गीत उगाया है।
1: जी तो ठीक है, आपकी पसंद पे एक खूबसूरत सा गाना आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
0: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो भागलपुर,
0: हाँ नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर सितारे जी, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छा हूँ।
0: फोन इन आपकी पसंद में, लगता है पहली बार आपसे हमारी बात हो रही है और काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप डॉक्टर हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। और आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं।
1: श्रोताओं को ये कहना कि पानी घर से पी करके ही निकले, बाहर से आकर के पानी नहीं पिए, फ्रिज का पानी नहीं पिए, बाजारू सामान नहीं खाए, टिकोले के शरबत का इस्तेमाल करें।
0: जी, यानी आप हमारे श्रोताओं को गर्मी में लू से बचाव के लिए कह रहे हैं और बाजार का सामान वगैरह ज़्यादा खाने से आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके प्रति आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: फिल्म है सरस्वती चंद्र, फूल तुम्हें भेजा है खत में।
0: क्या बात है, तो ये गाना आप खुद सुनेंगे या अपने कोई जाने वाले दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: दोस्त भी है मेरे, गजराज लोधी हैं, विजय
0: जी
1: कुमार पांडे हैं,
0: जी
1: सारदा बाबू हैं,
0: जी
1: और आप लोग, हम लोग सब लोग हुए भाई साहब।
0: जरूर जरूर। तो आपकी पसंद पे एक खूबसूरत सा गाना आपके तमाम दोस्तों को और अपने तमाम श्रोताओं को हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, फोन इन आपकी पसंद में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी पूनम नायडू।
0: बी पूनम नायडू जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं सर जी। हमारे इधर तो बारिश शुरू हो गई है अब तो।
0: जी, और देश के काफ़ी सारे इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन कई जगहों पे बारिश पूर्व काफ़ी आंधी आई और उससे काफ़ी क्षति भी पहुंची है लोगों को। और आज भी कई जगहों पे क्या होता है, मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, छिटपुट छिटपुट बारिश हो रही है।
1: जी, लेकिन बहुत ज्यादा इधर भी आंधी तूफान आया सर जी, लेकिन
0: जी
1: नुकसान कुछ नहीं हुआ वैसे हमारे इधर।
0: जी, हमारे इधर तो बहुत नुकसान हुआ है और कई लोगों के घर के जो छप्पड़ होता है, टीना वगैरह जो करकट डालते हैं, वो सब उड़ गया है। बहुत सारे पेड़ गिर गए, कई दिनों तक बिजली का भी समस्या का सामना करना पड़ा कई इलाकों में, तो काफ़ी सारा क्षति हुआ है। एक दिन नहीं, 2-3 बार लगातार हो चुका है, तो इस कारण से बहुत समस्याएं कई जगहों पे हुई है। फ्लाइट्स में काफ़ी सारे लेट डिले वगैरह ये सब भी झेलना पड़ा।
1: जी, इधर
0: जी
1: भी लाइट पोल थे सर जी, लगभग सप्ताह भर हम भी इधर बिना लाइट के ही थे।
0: जी जी और लेकिन बारिश भी आवश्यक है हमारे खेतों के लिए, हमारे वन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, तो बारिश होना भी जरूरी होता है।
1: जी, बहुत जरूरी है सर जी। अभी तो खेतों में मतलब हल वल चलाने का काम भी शुरू कर दिए हैं, कोई ट्रैक्टर से भी अपना कार्य
0: जी
1: कर रहे हैं
0: जी
1: अपने
0: जी
1: अपने खेतों में।
0: जी और आपको हम बताना चाहेंगे कि 14 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं, यानी विश्व रक्तदाता दिवस। यानी ये दिन है रक्तदान को प्रमोट करने का, उन रक्तदाताओं को याद करने का जिनके रक्तदान ने कई जिंदगियां बचाई हैं। तो हम सभी को, जो लोग, एक प्रोटोकॉल होता है रक्तदान का, उसको जो लोग फुलफिल करते हैं, सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक रक्तदान कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं।
1: जी, हमने भी किया था सर जी 2022 में।
0: जरूर जरूर, काफ़ी अच्छा काम किया आपने। और जिन लोगों ने नहीं किया है, वो भी अपने निकटतम रक्तदान केंद्र जो होता है, कई जगह शिविर लगते हैं या फिर ब्लड कलेक्शन सेंटर होता है, वहाँ जा करके अपनी जांच करा करके अगर आप इलिजिबल हैं तो आप ज़रूर रक्तदान कीजिए। आपका रक्तदान कई लोगों की जिंदगियाँ बचा सकते हैं।
1: नहीं, इधर भी जैसे शिविर लगता है या फिर हॉस्पिटल में भी जाके पहले से ही नाम लिखवाए रहते हैं सर जी। जिस दिन ये दिवस होता है तो उस दिन बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे लड़के लड़कियां और 18 से लेकर 60 वर्ष तक के सभी लोग जाते हैं सर जी।
0: जी, काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी लोगों के बीच में रक्तदान को लेकर भ्रांतियाँ होती है, तो आप इसके बारे में अपने निकटतम केंद्र पर जाकर वो भ्रांतियों को दूर भी कर सकते हैं।
1: जी,
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है सर जी बाजी, जो आमिर खान वाली बाजी।
0: क्या बात है,
1: हाँ, उस फिल्म में गीत है सर जी, मैं थोड़ा बोल बता देती हूँ
0: जरूर जरूर
1: आपको।
0: जरूर जरूर।
1: धीरे धीरे आप मेरे जिनके मेहमान हो गए, ये वाला गीत सर जी।
0: जी, तो ये गाना आप खुद सुनेंगे या अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये भागलपुर में जितने भी मधुर कलाकार हैं जैसे आप हैं सर जी, सबके लिए डेडिकेट रहेगा। और जो श्रोता मतलब ये कार्यक्रम सुनते हैं, जुड़े हुए हैं आप भागलपुर से, तो उनको जिनको पसंद है ये गीत, उनके लिए भी और हमारे परिवारजन और सभी दोस्तों के साथ और हम आपके साथ यह गीत सुनना चाहेंगे सर
0: जरूर
1: जी।
0: जरूर, तो ठीक है, आपकी पसंद पे एक खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे, और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
1: थैंक यू सर जी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुराचा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ।
0: जी जी
1: और मौसम बेहाल है सर,
0: जी
1: पानी गिरता है, उमर रात को उमर गर्मी होता है सर, दिन में भी धूप पड़ता है, कब बादल आ जाता है, कब पानी गिरने लगता है, कब हवा चलने लगता है, ये मतलब गारंटी नहीं है सर, लेकिन इस टाइप का मौसम बन रहा है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कहना चाहेंगे कि 12 जून जो है उस दिन हम लोग वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी आपने देखा होगा कि बाल मजदूरी के खिलाफ ये दिवस हम लोग मनाते हैं। और अपने आसपास आज भी हमारे समाज में बाल मजदूरी कहीं ना कहीं पे मतलब दिख जाती है। और महानगरों में बच्चों को या तो जबरन ले जाते हैं, या माँ बाप को पैसे देकर ले जाते हैं, या फिर बच्चों को उठा लेते, किडनैपिंग वगैरह करके भी ले जाते हैं। तो आपके आसपास अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप लोग पुलिस से मिलें और बच्चे की खोज कराएं। और महानगरों में भी अगर आपके आसपास कहीं दिखते हैं बच्चे बाल मजदूरी करते, तो इसकी सूचना पुलिस, निकटतम पुलिस केंद्र को दें, ताकि उनको रिकवर करा के उनके घर तक पहुंचाया जा सके। और कई सारे स्वयंसेवी संस्थाएं इसके लिए काम भी करती है, सरकार की भी कई सख्त रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। और बाल मजदूरी एक अपराध है, क्योंकि इससे बच्चे का भविष्य प्रभावित होता है, और साथ ही साथ एक बच्चा देश का भविष्य होता है, तो उसे देश का भविष्य भी प्रभावित होता है।
1: जी सर,
0: जी, तो इसलिए बाल मजदूरी को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है।
1: जी
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है सर और गीत के बोले सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सन।
0: क्या बात है।
1: और सबसे पहले गीत आपको कहने नहीं देते सर, आपको पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी भागलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवार जन के रिश्तेदारों को, सभी दोस्तों को कहने नहीं देते, और उसके बाद पूरे भारत

0: वर्ष के श्रोताओं को आकाशवाणी भागलपुर से जुड़ी सभी दोस्तों को और स्टाफ कर्मचारियों को पहले श्रोताओं को डीडी कर
1: जी जरूर। तो आपकी पसंद पे खूबसूरत सा गाना हम जरूर सुनाएंगे और इसी तरह आप हमें कॉल करते रहिएगा।
0: फैमिली के साथ धन्यवाद
1: धन्यवाद।

घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है, यानी वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को आप अपने मन पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गानों के लिए अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमें सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मुझे यानी सौरभ कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन आपकी पसंद, प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होता है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

0: नमस्कार बहनों, नारी लोक के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी सहेली मुनमुन। बहनों, आपने कई बार अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिसके शरीर का रंग सामान्य की अपेक्षा अधिक सफेद होता है, बालों का रंग सामान्य की तुलना अजीब से रंग का होता है। बहनों, कई बार हम ऐसे लोगों के साथ बैठना या उनके हाथों से कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं, जबकि हमारा ऐसा करना गलत होता है। वे पीड़ित होते हैं एक ऐसी बीमारी से जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 13 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करना, उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव और कलंक को मिटाना, समाज में समान अवसर दिलाना ही इस दिवस का उद्देश्य है। बहनों, एल्बिनिज्म एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में मेलानिन यानी त्वचा और बालों को रंग देने वाला पिगमेंट नहीं बनता है। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा और बाल बहुत हल्के सफेद होते हैं और आंखों की रोशनी भी प्रभावित होती है। बहनों, प्रतिवर्ष की भांति 2026 के विषय अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा के रंगों का उत्सव मनाना रखी गई है, जो रंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने और आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इस रोग से पीड़ित लोगों को समाज में कई तरह की भ्रांतियों, रूढ़ियों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये रोग माता पिता दोनों के माध्यम से बच्चे में स्थानांतरित होता है, भले ही माता पिता स्वयं इस स्थिति से प्रभावित ना हो। एल्बिनिज्म से ग्रसित व्यक्तियों को जीवन में दो स्तरों पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक मानसिक चुनौती। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का असर ये होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टिदोष, त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। दुनिया के कई हिस्सों में इस रोग को लेकर गहरे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता व्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि रंग भेद और रूढ़िवादिता के खिलाफ एक वैश्विक आंदोलन है। बहनों, एल्बिनिज्म से पीड़ित लोग भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अधिकार मिलने चाहिए। हमारे ये सामूहिक कर्तव्य है कि हम एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करें जहां कोई भी व्यक्ति अपनी त्वचा के रंग के कारण असुरक्षित या उपेक्षित महसूस ना करे। बहनों, अभी तक इस रोग से निपटने के कोई सही उपचार मौजूद नहीं है। यदि आपके आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ये रोग है, तो उन्हें हीनता की दृष्टि से ना देखें। ये कोई छुआछूत वाला रोग नहीं है बल्कि आनुवंशिक है। आपका सामान्य व्यवहार ही उन्हें उनकी बीमारी से लड़ने में मदद कर सकता है। बहनों, बातें आगे भी है, उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: हाँ। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
0: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बहनों, कल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रत्येक साल दुनिया भर में लाखों लोग रक्त और प्लाज्मा दान करने का निर्णय लेते हैं, इसी कारण इसे विश्व रक्तदाता दिवस कहा जाता है। बहनों, ये दिवस वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं का सम्मान करता है और सुरक्षित रक्त का तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नियमित रक्तदान की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जानें बच सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दान किए गए रक्त को अक्सर लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे घटकों में विभाजित किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न रोगियों के लिए किया जाता है। दुर्घटना से पीड़ितों को आपातकालीन रक्तदान की आवश्यकता, कीमोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगी, प्रसव

के दौरान जटिलताओं का सामना करने वाली माताएं एनीमिया या थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति, रक्त की कमी से जूझ रहे शल्य चिकित्सा रोगी, बहनों, रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। यदि आप 18 से 65 वर्ष की आयु के हैं और आपका वजन 45 किलो है, उससे अधिक है, हीमोग्लोबिन 12.5 है, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने हाल ही में अपने शरीर पर टैटू या पियर्सिंग करवाया है, COVID-19, मलेरिया, डायबिटीज या कोई ऐसी बीमारी जिसका संबंध रक्त से है, आप गर्भवती हैं या बच्चे का जन्म तुरंत हुआ है, आप स्तनपान कराती हैं, तो आप रक्तदान नहीं कर सकती हैं। बहनों, रक्तदान के लाभ भी हैं। ये शरीर में अतिरिक्त आयरन को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, नए रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, कैलोरी कम करता है, साथ ही वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। सामुदायिक भावना का निर्माण होता है, खासकर तब जब आप दूसरों की मदद करते हैं। आप रक्तदान रक्त बैंक और अस्पताल मोबाइल दान शिविर, सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य अभियान, रेडक्रॉस या एनजीओ द्वारा आयोजित दान केंद्र में कर सकती हैं। बहनों, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम किसी का जीवन बचाने में योगदान कर सकते हैं। आपकी एक दयालुतापूर्ण कार्य किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु में अंतर उत्पन्न कर सकती है। रक्तदाता जागरूकता दिवस केवल एक दिन मनाना नहीं है, बल्कि हर दिन जीवन को बचाना है। बहनों, इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के साथ ही बहनों प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय है लैंगिक समानता और भेदभाव। वार्ताकार हैं वर्षा कुमारी।
1: विकास और आधुनिकता के इस दौर में भी सामाजिक स्तर पर हमारी चेतना अब तक इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम हर एक व्यक्ति की मानवीय गरिमा को समान रूप से देख सकें तथा उसका सम्मान कर सकें। इस बात को हम समाज में व्याप्त कई प्रकार के भेदभाव के रूप में देख पाते हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव के रूप में इनमें सबसे प्रमुख है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव को सरल रूप में समझें तो यह वह स्थिति है जिसमें महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार, अवसर और सम्मान नहीं मिलता। जब किसी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन उसके लिंग के आधार पर किया जाता है तो यह लैंगिक भेदभाव है। यह असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, वेतन, निर्णय की स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता जैसे अनेक क्षेत्रों में दिखाई देती है। दुखद बात यह है कि यह सभ्यता के हर काल में मौजूद रहा है तथा वर्तमान में भी अपने बदलते स्वरूप के साथ मौजूद है। प्राचीन काल से ही समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिली, जबकि महिलाएं पीछे रह गईं। सभ्यता की शुरुआत में जब मानव शिकार करता था, महिलाएं भी उसमें शामिल होती थी, लेकिन गर्भावस्था आदि के दौरान उनकी सक्रियता कम हो जाती थी। वे प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण से प्रत्यक्ष जुड़े होने के कारण लंबे समय घर में या सुरक्षित स्थान पर रहीं। उनकी यही जैविक संरचना कालांतर में भेदभाव का बड़ा आधार बन गई। महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, बच्चे पालना चाहिए, खाना बनाना चाहिए आदि भूमिकाएं इसी आधार पर समाज द्वारा तय की गई। हमारा समाज पितृसत्तात्मक रहा है, जहां पुरुषों को परिवार और समाज का मुखिया माना गया। वे सक्षम और मजबूत माने गए तथा महिलाओं की इमेज कमजोर, अबला और आश्रित की बनाई गई। बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण और संगठित तरीके से महिला और पुरुष के बीच के जैविक अंतर को पुरुषों की श्रेष्ठता तथा महिलाओं की कमतरी में बदला गया, और यह सब कुछ दिन, कुछ साल नहीं, लंबे समय में हमारे समाज के व्यवहार में परिणत हो गया। इन व्यवहारों को हम अपने परिवार और समाज में विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जिन लड़कियों के बिना मानव सभ्यता चल नहीं सकती, उनका पैदा होना माँ बाप को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को दुखी कर देता है। बेटी को बोझ और पराया धन मानने की परिपाटी तो है ही। लड़कियों की उतनी ही पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है जितने में उनकी शादी निपटाई जा सके। लड़कियों के शिक्षा का उद्देश्य आज भी किसी ठीक ठाक घर में उनकी शादी कर देना भर है। बहुत कम ऐसे माता पिता हैं जो बेटी की पहचान, उसके अस्तित्व तथा उसके निर्णय के सम्मान के लिए उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। अच्छे स्कूलों में भेजने की बात हो और माता पिता के पास कम संसाधन हो तो बेटों को पहले भेजा जाता है। मनपसंद विषय की पढ़ाई हो या बाहर जाकर पढ़ने की बात हो, लड़कियों के रास्ते में हजार बाधाएं हैं, लाखों सवाल हैं। धारणा तो यह भी है कि लड़कियां विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगी, तकनीक नहीं समझ पाएंगी। अक्सर उन्हें गृह विज्ञान, कला, संगीत आदि विषयों की पढ़ाई के लिए विवश किया जाता है, और हम यह भी सुनते हैं कि इनको तो घर ही संभालना है। महिलाओं का काम घर संभालना है और पुरुष ही कमाने वाला होता है, जैसी धारणाएं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। दूसरों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी उनके साथ दोयम दर्जे के व्यवहार को निर्धारित करती है। हमारे समाज में महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से ज़्यादा उनकी शादी करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी ही लड़कियां शादी का मतलब समझने से पहले ही बाल विवाह की शिकार हो चुकी होती हैं। बाकी लड़कियां भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और उत्पादक समय में शादी की जिम्मेदारियों से जूझती रह जाती हैं। इन चुनौतियों के बीच में घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकार भी होती हैं। पैसों के लिए पुरुष पर निर्भरता से ना तो उन्हें निर्णय की स्वतंत्रता हासिल हो पाती है, ना ही गरिमापूर्ण जीवन। उनके स्वास्थ्य की भी अनदेखी की जाती है। महिलाएं यूं भी सभी के खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, पर उनके स्वास्थ्य पर शायद ही कोई ध्यान देता है। नतीजा यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि भारत की करीब 60% महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया से पीड़ित हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर ज़्यादा है, और लगभग 3 में से 1 महिला मध्यम से गंभीर एनीमिया ग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, 30 वर्ष से 40 वर्ष तक की महिलाएं हड्डी से जुड़ी समस्याओं से भी पीड़ित रहती हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना करके महिलाएं नौकरी अथवा रोजगार के क्षेत्र में आती हैं, तब पुरुष प्रधान क्षेत्र में उनके समक्ष खुद को साबित करने का दबाव लगातार बना रहता है। निजी क्षेत्र में अधिकतर समान काम के लिए समान वेतन भी प्राप्त नहीं होता। महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें या निर्णय की स्वतंत्रता की, उसके लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। समूची दुनिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं को चौके से संसद तक लाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनका यह सफर मीलों दूर है। चुनाव लड़ना और राजनीति में सक्रियता तो दूर की बात है, वह वोट भी अपनी मर्जी से नहीं डालती। कुछ महिलाएं जो चुनाव जीतकर आती भी हैं, वह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं हैं। उनके फैसले और उनके काम को उनके घर के पुरुष संचालित और नियंत्रित करते हैं। समाज की आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतुलित नहीं कहा जा सकता। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बराबर नहीं होना लैंगिक भेदभाव को बड़े स्तर पर उजागर करता है। महिलाएं ना तो अपने घर में निर्णय ले पाती हैं, ना ही राजनीतिक निर्णय ले रही हैं। पोषण, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी और निर्णय की स्वतंत्रता, इन सभी में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी अब तक सुनिश्चित नहीं हुई है। बावजूद इसके यह सुखद बदलाव है कि तमाम बाधाओं को पार कर महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और स्वयं को साबित भी कर रही हैं। जिन क्षेत्रों को महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, वैसे क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, चाहे वह सेना हो या पुलिस, वह पायलट हो या ड्राइवर। नए आविष्कारों से लेकर चंद्रयान के प्रक्षेपण तक वह साबित कर रही हैं कि मेधा

0: शक्ति में अथवा क्षमताओं में वह किसी भी प्रकार से कम नहीं है। हालांकि बराबरी के लिए अभी लंबा सफर बाकी है और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन करना होगा और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। सबसे पहले माता पिता को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह अपने बच्चों को बेटा और बेटी की तरह नहीं बल्कि संतान की तरह उनसे व्यवहार करें, उनके लिए बराबरी से शिक्षा, पोषण और प्यार सुनिश्चित करें। समाज के स्तर पर हमें यह सचेत होना होगा कि लड़कियों से जुड़ी जितनी भी लैंगिक धारणाएं अथवा पूर्वाग्रह हैं हमें उनसे मुक्त होना चाहिए। लड़का और लड़की के बीच अंतर केवल जैविक संरचना का है, न कि बुद्धि और क्षमताओं का। इस बात को हमें भरपूर रूप से समझना होगा। आज के दौर में लड़कों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने साथ माँ, बहन, दोस्त, चाहे जिस भी रूप में उनके जीवन में लड़कियां हैं, उन्हें बराबर से सम्मान और अवसर दें। उन्हें भोग की वस्तु अथवा देह के रूप में देखना बंद करें। हम महिलाओं का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास की हर महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम विकसित करें और उन्हें आगे लाने का प्रयास करें। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं और व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाएं आगे आ सकें। इसके साथ ही हम सबों को आगे आना होगा कि उनके घर की जिम्मेदारियां तथा उनके दैनिक जीवन की चुनौतियां कम हो सके, कार्यस्थल पर उनका काम करना सुचारू और सुगम हो सके। हमें इस व्यवस्था के बारे में भी सोचना होगा ताकि महिलाओं को अपना काम और करियर बीच में ना छोड़ना पड़े। एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हर किसी को, खासकर महिलाओं को, समान अवसर, समान अधिकार और सम्मान मिले।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी पूर्व प्रसारित वार्ता, विषय था लैंगिक समानता और भेदभाव। वार्ताकार थी वर्षा कुमारी। वार्ता के बाद आइए सुनते हैं ये गीत।

बिल्कुल बहनों, दिल अभी भरा नहीं। इस गीत के तरह ही बहनों, हमारा भी मन आपको छोड़कर जाने का नहीं हो रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए अपनी सहेली मुनमुन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये था महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं बलराम दास मिश्र का तबला वादन। आरंभ में सुनिए एक ताल।

सुर संगम कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं बलराम दास मिश्र का तबला वादन। एक ताल के बाद अब प्रस्तुत है इनका बजाया रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे बलराम दास मिश्र का तबला वादन रूपक ताल में। इसके साथ ही सुरसंगम कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक रंग लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विनय कुमार शुक्ला। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए विकास गीत, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कुछ खास संदेश।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: लोकरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विनय कुमार शुक्ला को। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्वी।

विनय कुमार शुक्ला के गाए लोकगीत हम आपको पुनः सुनवाएंगे 1:20 पर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना, कहा विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नया कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया, कहा देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शत प्रतिशत किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कोल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विज्ञान, अंतरिक्ष, विनिर्माण और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में देश के युवा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में उभरने में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने नवाचार और युवा नेतृत्व वाले विकास को नई गति दी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल एक नारा नहीं बल्कि देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण है।
1: तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
0: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नागरिकों और व्यवसायियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मोदी सरकार के कार्यकाल को 12 साल बेमिसाल बताते हुए आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना

0: आराधना की।
1: मोदी जी के 12 वर्ष में बहुत सारे योजना ऐसे चल रहे हैं जिसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना और ये योजना चला है, आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीबों को इलाज के लिए योजना हो रही है, उसमें काफी लोग आयुष्मान भारत से लाभ ले रहे हैं। उसके बाद पीएम किसान योजना जिसमें हर साल किसानों को 6,000 रुपये का अनुदान राशि दिया जा रहा है, इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह बहुत सारा योजना भी चल रही है।
0: असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिमडेगा जिले ने जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 100% पूरा कर इतिहास रच दिया है। झारखंड में यह मुकाम हासिल करने वाला सिमडेगा पहला और अग्रणी जिला बन गया है। जनगणना निदेशालय ने उपायुक्त कंचन सिंह के नेतृत्व में मिली इस उत्कृष्ट सफलता की सराहना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 29 जून को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में JSSC से चयनित 1018 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए की गई है। सरकार का लक्ष्य सहायक आचार्य के कुल 26,000 पदों को तेजी से भरकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता 3 बच्चों का सुराग लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज शाम शहर में मसाल जुलूस निकालेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रोश जताया है।
2: अविलंब 3 बच्चों की बरामदगी हो, बात होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं ध्रुवा मंडल के अध्यक्ष महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि कल शाम में 6 बजे उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय। शादियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है।
0: रांची नगर निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 32 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। उपनगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि 30 जून तक एकमुश्त टैक्स भुगतान करने पर नागरिकों को 10% तक की छूट दी जा रही है। गिरिडीह पुलिस ने जिले में गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की त्वरित व सटीक जाँच के लिए विशेष जाँच सेल का गठन किया गया है। SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह विशेष टीम हत्या, लूट और महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मामलों की वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर तफ्तीश करेगी।
3: इन्वेस्टिगेशन सेल हमने यहाँ पे बनाया है अलग से। एक सेल जिले में काम करेगी, दूसरा कोई महुआ अनुमंडल में काम करेगी। जिले की सेल सभी से कोऑर्डिनेट कर वैसे केसेस की सूची इनके पास रहेगी और वो पूरी टीम रहेगी जहाँ पे केस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे उसका डिटेक्शन किया जाएगा। उसको हर तरह की संभव सहायता दी जाएगी जिला से ताकि उसका अतिशीघ्र उस केस का हम लोग मतलब डिटेक्शन कर पाए।
0: जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी आशु कर्मकार सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। CTSP ललित मीणा ने बताया कि अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, जिंदा गोलियां और खोखे बरामद किए गए हैं।
4: पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कदमा थाने की टीम द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। तो ये घटना छापेमारी करने के लिए टीम गठित थी, उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया और सती घाट पर खरकई नदी के किनारे से 2 लोगों को पकड़ा गया। इस मामले में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई थी देसी पिस्टल वो बरामद कर ली गई है और भी कुछ

0: इस पर पास में आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
1: उत्तर प्रदेश के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में एक कार और ट्रक के बीच में हुई आमने सामने की भीषण टक्कर में पलामू जिले के मेदिनीनगर के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। सभी देहरी में बारात में शामिल होने के बाद किछौचा शरीफ से वापस लौट रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,48,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून ने संताल परगना के रास्ते दस्तक दे दी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल्हान और संताल क्षेत्रों में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों के भीतर मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। इधर रांची में आज दोपहर गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश के युवाओं और खिलाड़ियों की सराहना। कहा, विज्ञान, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्रों में छोटे शहरों व गांवों के युवा रच रहे हैं नए कीर्तिमान। केंद्रीय कहा, देश की जनता के विश्वास और सुशासन का जीवंत प्रमाण। सिमडेगा जिले ने मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 100% किया पूरा। जनगणना के पहले चरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला बना। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संताल और कुल्हान क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से खेल जगत स्तब्ध। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। एक बार फिर स्वागत है लोकरंग कार्यक्रम में। आज कलाकार हैं विनय कुमार शुक्ला। इनके स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विरह गीत।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: विनय कुमार शुक्ला के स्वर में अब सुनिए निर्गुण।

विनय कुमार शुक्ला के गाए इस निर्गुण के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है संताली कार्यक्रम जीवन झरना। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱣᱮᱨᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱡᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮ ᱟᱭᱩ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱤᱠᱤᱲ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱛ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱤᱢᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤᱫᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹᱫᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱷᱮᱫᱽᱵᱷᱟᱣ ᱪᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱜᱚᱯᱚᱡ ᱞᱚᱴ ᱠᱩᱴᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱡᱤᱱᱫᱜᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱫᱚᱞ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱣᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱠᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱚᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜ, ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱛᱟᱠᱚ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤᱦᱟᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩ panol ria da ku nyui ar dalia lekana jenis ku jom nyui kuli gidra ayu lekagi ketek ku hui len khan adigi bhage huyua mi din kuli gidra ho ayu a jagha ko hatawa ayu lekagi unko ho mi din lot lot ko kamiya kuli gidra duku dhon kana kuli ku ol padhav len khan gharonj ren joto hoda marshal huyua mi gharonj re aima gidra ku jonom kana jonom dor kuma a kuli gidra ku jonom re do abu raska jarur kana ente nito do nyele adhar te bujhe kana kora gidra khon kuli gidra do kom ge ku jonom kana sikshit kuli gidra ko do katij umar ria bapla ko rokawa kuli ko padhav ochu ku lagi te sanam पंचायत रे बारहवीं क्लास हबिज स्कूल खुलई लगी योजना को चलाव कादा तो नवा लेकाते आयमा लेकान ना कमी चला कना गोगो दल दो गोगो कोवा विकास रिया चिन्ह कना महिला गोगो को दो गोगो को होते ते रेंगेज आर छुटव कान आयु को दल रिया मूल धोरा रे को जोड़ा कना नुंका लेकाते गोगो कोवा मने दो नवा गोगो के दल रे सेलेदो लगी लाविरों कान तकुआ से नुआर को सेले दो लगित उनको हुकु मने इदा अदो जोतो गोगो को नुआ दोल रिदो सेले दो लगित जरूर मिना तबुना तबे अने गे अबु दबु केटे दाड़े आ रेंगे जतरेन आयु से गोगो को हो नुआर को सेले लेन खान अकुआ हुदिस बिचर को बदल दाड़े आ से अकुआ ताहन रिया रहन सहन हुकु लहा दाड़े आ उनको तलारे अकिल मार्शल पसना आ उना इयते गोगो कोवा दोल रे सेले दो दो अडी जरूरो गिया नुंका तेगी गोगो को दो को केटेज दाड़े आ से लहासेन हुकु तड़ाम दाड़े आ।
1: ᱱᱤᱛ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱱᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱩᱲᱠᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ

आप सुन रहे थे संताली कार्यक्रम जीवन झरना, प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के आसपास हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री कुशवाहा का इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय है, क्योंकि केवल उन्होंने ही नामांकन पत्र भरा है। उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पटना स्थित स्मृति संग्रहालय में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने ब्रज बिहारी प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, रोहतास, अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना और शेखपुरा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका है। पटना के विश्वकुमार भवन की 13वीं मंजिल पर आज तड़के आग लग गई। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी

0: अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच होने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। बिस्कोमान की इस मंजिल पर बेल्ट्रॉन का कार्यालय है। आग लगने के चलते कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरावगंज के पास NH 31 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GNCH पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बेतिया पहुंचने पर सारांश कुमार का बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के परिमार्जन के लिए घूस ले रहा था। समस्तीपुर जिले के बढ़ौना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के नौजवान साइंस, टेक्नोलॉजी, खलाई मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे शोबों में काबिल जिक्र हुसूलियाबियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अहम स्टार्टअप मराकज में शामिल है और इसकी कामयाबी में छोटे शहरों और गाँव के नौजवानों का अहम किरदार है। वजीर आजम ने खेलों में नौजवानों के शानदार मुजाहरे की सताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी मुकाबले में मुल्क की शान बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने जिद्दत और सनतकारी को फ़रोग दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों से NDA हुकूमत नौजवान क़यादत वाली तरक्की की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे मुल्क के नौजवानों की खुद एतमादी में इजाफा हुआ है और वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबा पूरे मुल्क में लड़कियों की इख्तियारकारी की एक बड़ी मुहिम बन गई है। ख्वातीन व इत्फाल तरक्यात वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरसों में पैदाइश के वक्त जिनसी तनासुब 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं सेकेंडरी सतह पर तालिबात का दाखिला भी तकरीबन 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। महकमा ने कहा है कि यह मंसूबा तालिबात की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और इख्तियारकारी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडियन फूड सिक्योरिटी और FSSAI ने खुर्दनी अशिया और उनकी पैकेजिंग में धात के पिन और तारों के इस्तेमाल को फौरी असर से बंद करने का हुक्म दिया है। अथॉरिटी ने कहा है कि केक की सजावट और मिठाई के डब्बों समेत दीगर खुर्दनी पैकेट में पिन या तार का इस्तेमाल सारिफिन की सेहत के लिए संगीन खतरा बन रहा है। FSSAI के मुताबिक अवामी सेहत को देखते हुए खुर्दनी प्रोडक्ट ताजिरों को पैकेट में पिन और तार का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कौमी सदर ओहदा के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जनाब कुशवाहा का इस ओहदा के लिए बिला मुकाबला इंतखाब तय है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही पर्चा दाखिल किया है। उनके इंतखाब का रस्मी ऐलान अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। वजीर आला सम्राट चौधरी ने साबिक वजीर ब्रज बिहारी प्रसाद की 28वीं बरसी के मौके पर पटना वाके मेमोरियल म्यूजियम में मुनक्किद कुल मजहबी प्रार्थना सभा में शिरकत की। वजीर आला ने ब्रज बिहारी प्रसाद के मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। रियासत के 19 अजला तक मानसून की आमद हो चुकी है। मानसून का शुमाली हद अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रहा है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक आज रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, रोहतास, अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना और शेखपुरा जिले में कुछ मकाम पर जबरदस्त बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इस दौरान तेज हवा के साथ बर्फबारी का भी अंदेशा है। पटना में बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर आज सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड दस्तों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड अफसर अजीत कुमार ने बताया कि इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट

किट से आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जांच मुकम्मल होने के बाद ही सही वजूहात का पता चल सकेगा। विस्कोमान की इस मंजिल पर बेल्ट्रॉन का दफ्तर है। आग लगने के सबब कई अहम कागजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात खाकिस्तर हो गए। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना इलाके के तहत जुराबगंज के करीब NH 31 पर एक बस के बेकाबू होकर पलट जाने से 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। इनमें से 15 की हालत नाजुक बताई जाती है। संगीन तौर पर जख्मियों को इब्तदाई इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए GMCH पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। मगरबी चंपारण जिला के योगापट्टी ब्लॉक बाशिंदा सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में मुनक्किद पहले आलमी योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। बेतिया पहुंचने पर सारांश कुमार का बैंड बाजे के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर सर्किल दफ्तर के महसूलात मुलाजिम सुजीत कुमार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलाजिम शिकायत कुनिंदा से जमीन की पैमाइश के एवज में रिश्वत ले रहा था। समस्तीपुर जिला की बढ़ौना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर्स, लर्नर्स, कोरेजस डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।

0: कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है।

0: टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

सिलसिला फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार थे शिव हरे। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म है आपकी कसम। आनंद बख्शी का गीत और संगीतकार हैं राहुल देव वर्मन।

आराधना फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन।

0: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रपट से कार्यक्रम में।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यसुदास को आपने सुना फिल्म त्रिशूल में। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार थे खयाम। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारी का गीत, OP नैयर का संगीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले की, और फिल्म है कश्मीर की कली।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है चित्रपट से कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज कलाकार हैं मधुकर निराले और साथी। इनके स्वर में आरंभ में सुनिए गणपति वंदना।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: मधुकर निराले और साथियों के स्वर में अब सुनते हैं गोलंद।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: मधुकर निराले और साथियों को आप सुन रहे हैं प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में। इनके स्वर में आप सुनते हैं लावणी।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: मधुकर निराले और साथियों के स्वर में अब आइए सुनते हैं अमंग।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मधुकर निराले और साथियों को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 बजे तक और फिर 5 बजे से पुनः आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: तुझको बिठा कर।
1: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
2: मनचाही गीत।
3: मन चाहेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार, सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं यह यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा न।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, भीष्म, भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही

अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई दे

0: भाई, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए, महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है, राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: वंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सबरेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है।

राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र राष्ट्र ज्योतिहीन है। जनमान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो दृश्य

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्यश्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्योंकि आपने केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती। किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
0: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
1: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: मैं
1: धृतराष्ट्र। ओ, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
0: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
1: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
0: क्या?
1: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
0: क्या हुआ, गिर पड़ी?
1: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
0: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
1: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
0: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताक्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
1: महाराज,
0: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
0: क्या?
1: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत्य यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत्य कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गंधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से इस संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गंधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गंधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सत्य, असहनी है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो

0: शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
1: कांधारी,
0: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
2: जो आज्ञा महारानी।
1: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
0: हाँ महाराज, सुना, जान का सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
1: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
0: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
1: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
0: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
1: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
0: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
0: अर्थात हस्तनापुर का भावी शासन?
1: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
0: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
1: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
0: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
1: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
0: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? क्या अपमान इतना?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश।
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर किया है?
1: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है।
1: पारानी,
0: पारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दें।

कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुने की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर्व?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्त नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं,
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर

0: जाहिर सी बात है उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट थी, वो भी फिट हो गई।
0: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
1: करेक्ट,
0: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था।
1: आर डी बर्मन
0: साहब का। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
1: करेक्ट,
0: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
1: करेक्ट।
0: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ लाना और फिर उस पर डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, तो जो धुन बना रहे थे इट वाज मतलब एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा का।
0: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
1: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

जो एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनो सर या पैर नहीं था बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ, यू नो, एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो हाँ। गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं,
1: हाँ।
0: अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा
1: तो मेरी कहानियां होती थी,

0: तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के, जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियानवी के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
1: चित्रलेखा,
0: चित्रलेखा करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था मेरे माइंड की क्या सोच है, और इसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली।
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया,
1: किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग विनोद डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ। मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस ज़माने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूज़िक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूज़िक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूज़िक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आपको ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हैं, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है
1: दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में चले आ।

0: यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं। गाने में बीट्स होती हैं, ओके। एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर, वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज़, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम, वही फॉर्मेट, वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है।

0: सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फटफट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ. लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी, और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए. एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स. तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा. मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं. कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता, और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है, लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं. कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है. आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं, और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है, या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है, और वो चेहरे पे दिखने लगता है. तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है.
1: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है. बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी. ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा. अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया. तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हों या सिंगिंग शोज हों, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं.
0: करेक्ट. बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है.
1: हाँ.
0: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है. बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
1: अजनबी.
0: हाँ, अजनबी वही गाना, लेकिन मॉडर्न स्टाइल में. आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है.

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: Nusayak, Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विथ रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जांपल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा मेहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वाज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन, साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी. वेयर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकती के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मानसी और आज शनिवार जून के दूसरे सप्ताह की इस सुहानी शाम में लेकर हाजिर हूं आपके लिए ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरपूर एक विशेष प्रस्तुति। दोस्तों, जून के महीने में गर्मी की तपिश के बीच कहीं बादलों की आहट सुनाई देने लगती है तो कहीं नई उम्मीदों और नई सपनों की शुरुआत हो रही है। हर नया दिन अपने साथ कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और कुछ नया सोचने का अवसर लेकर आता है। युवाओं की यही ऊर्जा, यही उत्साह और सकारात्मक सोच समाज और देश की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में

0: सबसे पहले चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में, उसके बाद होगा स्तंभ डेली ट्रिविया। कार्यक्रम के आगामी हिस्से में होगा हमारा विशेष प्रस्तुति स्तंभ भावगीत, जहां एक रोचक विषय के साथ सुनाएंगे आपको कुछ बेहतरीन फिल्मी गीते। इसके बाद समसामयिकी में बात करेंगे उन घटनाओं और विषयों की जो इस सप्ताह चर्चा में रहे। अंत में फन फैक्ट, डेली ट्रिविया और समापन बातचीत के साथ संपन्न होगा हमारा आज का कार्यक्रम। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्तंभ चर्चा से। दोस्तों, आज चर्चा में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की, जो प्रतिवर्ष 13 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक रंग द्रव्य का निर्माण कम या बिल्कुल नहीं होता। इसके कारण व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों का रंग सामान्य से अधिक हल्का दिखाई देने लगता है। एल्बिनिज्म कोई संक्रामक रोग नहीं है और न ही यह किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। फिर भी जानकारी के अभाव में एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों को कई बार सामाजिक भेदभाव और गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना, एल्बिनिज्म से जुड़े मिथकों को दूर करना तथा ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करना है। एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों को विशेष रूप से दृष्टि संबंधी समस्याएं और सूर्य की तेज किरणों से त्वचा को नुकसान पहुंचने का खतरा अधिक होता है, इसलिए उन्हें नियमित स्वास्थ्य देखभाल, उचित चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। आज आवश्यकता इस बात की है दोस्तों कि हम विविधताओं को स्वीकार करें, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करें। किसी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा, क्षमता और व्यक्तित्व से होती है। आइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर हम सभी एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां सम्मान, समानता और संवेदनशीलता को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। इसी संदेश के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मित्रों, अब बारी है कार्यक्रम में दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित प्रश्न पूछने की, जिसमें आज का प्रश्न है कि भारत के पहले रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने और कब की थी। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए अपनी रेडियो दोस्त मानसिक के साथ। दोस्तों, अब समय है कार्यक्रम के उस हिस्से का जो सीधे दिल की भावनाओं को छूता है। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तुत है हमारा विशेष स्तंभ भावगीत। भावगीत केवल शब्दों और सुरों का मेल नहीं होता, बल्कि यह मन के उन कोमल एहसासों की अभिव्यक्ति है जिन्हें हम अक्सर शब्दों में बयां नहीं कर पाते। आज के भावगीत में हम लेकर आए हैं बरसात की पहली फुहार की मधुर अनुभूति। तपती धरती पर जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं तो केवल मौसम ही नहीं बदलता, मन भी एक नई ताजगी और उल्लास से भर उठता है। इसी मनोहर एहसास को शब्दों में पिरोया है आज का हमारा भावगीत सेगमेंट। बरसात की पहली फुहार अपने साथ केवल पानी की बूंदें ही नहीं लाती, बल्कि ढेर सारी यादें, खुशियां और मन को छू जाने वाली अनुभूतियां भी लेकर आती हैं। तपती धूप और उमस भरे दिनों के बाद जब आसमान में काले काले बादल छाते हैं और धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरती है, तो

वातावरण एक नई ताजगी से भर उठता है। बारिश की पहली फुहार खेतों में हरियाली का संदेश लेकर आती है। किसानों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान खिल उठती है और प्रकृति मानो नए जीवन का स्वागत करने लगती है। पेड़ पौधे धुलकर और भी सुंदर दिखाई देने लगते हैं। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हर किसी के मन को मोह लेती है।

दोस्तों, बरसात का मौसम केवल प्रकृति को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी आनंद से भर देता है। बचपन में बारिश में भीगना, कागज़ की नाव चलाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना आज भी यादों में ताज़ा है। यही वजह है कि बारिश का मौसम हर उम्र के लोगों को विशेष रूप से प्रिय होता है। जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर दस्तक देती है तो मन में अनगिनत भाव जाग उठते हैं। किसी को अपने बचपन की याद आती है तो किसी को अपने प्रियजनों के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आते हैं। साहित्य, संगीत और फिल्मों में भी बारिश को प्रेम, खुशी और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है।

दोस्तों, बरसात हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बाद सुखद पल अवश्य आते हैं। जैसे सूखी धरती बारिश की बूंदों से तृप्त हो जाती है, वैसे ही आशा और सकारात्मकता हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करती है। बारिश की पहली फुहार हमें प्रकृति के और भी करीब ले जाती है। यह मौसम हमें भागदौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ पल निकालकर प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने का अवसर देता है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाएं मन को सुकून देती हैं, ठीक इसी गीत की तरह।

प्रिय श्रोताओं, बारिश की पहली फुहार केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन में नई उमंग, आशा और नई शुरुआत का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हर कठिन दौर के बाद खुशियों की बारिश अवश्य होती है। बारिश की हर बूंद में प्रकृति का प्यार और जीवन का संदेश छुपा होता है, बिल्कुल इसी गीत की तरह।

बरसात की पहली फुहार जैसे ही धरती पर उतरती है, प्रकृति का हर कोना मुस्कुरा उठता है। सूखी पत्तियों पर ठहरी बूंदें मोतियों सी चमकने लगती है और हवाओं में एक अनोखी मिठास घुल जाती है। दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट और छतों पर गिरती बूंदों की रुनझुन मन में नया संगीत जगा देती है। यह मौसम केवल बारिश का नहीं बल्कि नई उमंगों, ताज़ी यादों और अनगिनत सपनों का मौसम है। आइए इन भीगी भीगी फिजाओं और मन को छू लेने वाले एहसासों के साथ सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी अभी आपने सुना भावगीत बरसात की पहली फुहार पर। इस भावगीत ने वर्षा ऋतु के आगमन से जुड़ी उन मधुर अनुभूतियों को शब्द और स्वर दिए जो हर किसी के मन को आनंद से भर देती है। बरसात की पहली बूंदें केवल धरती की प्यास ही नहीं बुझाती, बल्कि मन में नई आशाओं और सपनों को भी जन्म देती हैं। भीगी मिट्टी की सौंधी महक, पेड़ों की हरियाली, ठंडी हवाओं का स्पर्श और बूंदों की मधुर रुंझन प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का एहसास कराते हैं। यह भावगीत हमें याद दिलाता है दोस्तों कि जीवन में परिवर्तन का हर मौसम अपने साथ नई संभावनाएं और नई ऊर्जा लेकर आता है। इन्हीं सुंदर भावनाओं और प्रकृति के इस मनमोहक संदेश के साथ हम भावगीत बरसात की पहली फुहार को यहीं विराम देते हैं। अब बारी है हमारे अगले दैनिक स्तंभ समसामयिकी की। एपिडा ने झारखंड से समुद्र तट पर स्थित आमों का पहला व्यावसायिक संयंत्र यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया। भव्या पोर्टल को भारत औद्योगिक विकास योजना को चालू करने के लिए लॉन्च किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 से 18 जून

के दौरान फ्रांस और स्लोवाकिया दो यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विनिमय पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल ढुलाई और यात्री आवागमन को सुगम, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए है। आज के समसामयिक ज्ञान से बस इतना ही। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने दैनिक स्तंभ डेली ट्रिविया के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक प्रश्न पूछा था आपसे कि भारत के पहले रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने और कब की थी, जिसका सही जवाब है MV गोपाल स्वामी ने 1935 में मैसूर में की थी, जिसे बाद में सरकार को सौंप दिया गया। डेली ट्रिविया के बाद अब बारी आती है अगले दैनिक स्तंभ फन फैक्ट के अंतर्गत आकाशवाणी संबंधित एक जानकारी बताने की। क्या आपको पता है मित्रों, आकाशवाणी 23 भाषाओं और 146 से अधिक बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रसारण करता है। इसके अलावा इसका बाहरी प्रसारण प्रभाग दुनिया के 100 से अधिक देशों में भी कार्यक्रम प्रसारित करता है। दोस्तों, स्तंभ डेली ट्रिविया और फन फैक्ट यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ आज के युवानी कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आशा है दोस्तों कि आज की संध्या कार्यक्रम में प्रस्तुत विभिन्न विषयों, चर्चाओं, भावगीत और मधुर गीतों ने आपके मन को स्पर्श किया होगा तथा आपको कुछ नया सोचने और समझने का अवसर भी दिया होगा। आज के कार्यक्रम में हमने समसामयिक विषयों पर विचार साझा किए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के महत्व को समझा और भावगीत बरसात की पहली फुहार के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता तथा जीवन में नई आशाओं के संदेश को महसूस किया। आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आज के कार्यक्रम का कोई भी भाग आपको पसंद आया हो तो आप अपनी राय, संदेश, ईमेल या फिर पत्र के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड नंबर 812001। हमारा ईमेल एड्रेस है phaiarbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, युवानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं बल्कि युवाओं के विचारों, सपनों और रचनात्मकता को एक सार्थक मंच प्रदान करना भी है। बदलते समय के साथ नई चुनौतियाँ और नए अवसर हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसे में हमारी सोच, जागरूकता और निरंतर सीखने की भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रिय साथियों, जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तताएं क्यों न हो, अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए, सीखते रहिए और अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहिए। यही छोटे छोटे प्रयास हमें बेहतर इंसान और बेहतर समाज की ओर ले जाते हैं। अब दीजिए इजाज़त अगली मुलाकात तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त मानसी को। शुभ संध्या एवं नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म डेंजरस इश्क से। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल, राहत फतेह अली खान और हिमेश रेशमिया ने। समीर अंजान ने इसके बोल लिखे हैं, हिमेश रेशमिया का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म एक विलन रिटर्न से। इस गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने, कौशिक और गुड्डू का संगीत है, राघव चैतन्य ने इसे गाया है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
3: क्रेश,
4: क्रेश
2: और बाल्टी बॉय।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म जाने मन का ये गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने, अनु मलिक का है संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म का ये लोकप्रिय गीत। आवाज़ है राहत फतेह अली खान की। इस गीत के बोल लिखे नुसरत फतेह अली खान और मनोज मुंतशिर ने। रोचक कोहली का संगीत है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार सचिदानंद सिंह की प्रस्तुति। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुलहरी में गायिका मृदुला कुमारी मारतंड की प्रस्तुति सुनेंगे आप। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम संस्कृति भारती सुनेंगे आप और रात्रि 10 बजे सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर हम लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक वार्ता, विषय है रक्तदान महादान। वार्ताकार है डॉक्टर आरपी यादव। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। प्रातः 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सबसे पहले सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार ब्रजेश कुमार छाया की प्रस्तुति। तत्पश्चात 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदी वार्ता में एक वार्ता, विषय है ग्लोबल वार्मिंग से लुप्त हो रही हमारी नदियां। वार्ताकार है मनोज कुमार मिश्र। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस दौरान आप जानेंगे कुछ जरूरी सूचनाएं जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां।

प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल मंजूषा। 10:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। 10:30 पर कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार जयप्रकाश शर्मा की प्रस्तुति सुनेंगे आप। कल दिन में 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञानवाणी। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसंगम में कलाकार श्री संगीत कुमार नाहर की प्रस्तुति सुनेंगे आप। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में वीरेंद्र कुमार ठाकुर की प्रस्तुति। 1:30 पर आप सुनेंगे अंगिका पत्रिका पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम अंग दर्पण। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे आप श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 3:00 आप सुनेंगे सामुदायिक गान एवं शिक्षा पाठ। संध्या 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार नवल किशोर नवीना की प्रस्तुति। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार विजय कुमार दास की प्रस्तुति। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर आएंगे हम। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवार संगीत सभा कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अन्नो का नमस्कार।
1: सबको मन्नो को भी नमस्कार और अपनों को भी नमस्कार। अन्नो भाई
0: नमस्कार। नमस्कार मन्नो भाई, तब हाल समाचार सुनाइए। हाल समाचार सब ठीक ठाक है ना?
1: सब चकाचक छो। अपना सुनावा देखो कि मौसम ने एकदम करवट ले छे।
0: बिल्कुल
1: छे कि नहीं?
0: और मौसम, और देखिए मन्नो भाई, जिस चीज का हम लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। मानसून का आगमन बिहार में हो चुका है।
1: जी जी।
0: और मानसून के आगमन के साथ ही जो गर्मी से हम लोग परेशान थे, अब उससे हम लोगों को राहत भी मिल गई है। और हमारे किसान भाई भी कहीं ना कहीं जो है अब कृषि कार्य बड़ा तेजी से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वातावरण में जो नमी व्याप्त थी और गर्मी जो थी, उससे भी अब हम लोगों को कुछ राहत मिली है।
1: हाँ, देखो अनु भाई, कि हमारा सनी के देश जे एकदम कृषि प्रधान देश छे और अपना कृषि तो एकदम मानसून पर ही आधारित हो।
0: बिल्कुल।
1: ये वास्ता जन है वर्षा के मौसम आवे छे, आषाढ़ घुसे छे, आदमी जे छे किसान एकदम खुशी से झूमी उठे छे।
0: जी।
1: के वर्षा पानी होते और खेतों में तैयारी भी हुआ लगे छे, हुरो गनरो लगा फेंका लगे छे, बिछड़ो जोतवावा लगे छे, छे कि नहीं?
0: बिल्कुल।
1: थैरंग जे छे एकदम खुशी की बात हो छे कि भाई अब नया खेती शुरू होते धान के। ये वास्ता मानसून के इंतजार हमरा सनिक बेसब्री से रही छे।
0: बिल्कुल। और मानसून के आगमन के साथ साथ अभी देखिए मन्नो भाई, बाजार से जब मैं आ रहा था तो रास्ते में देखा कि आम, लीची, जामुन जैसे फल जो है पूरे बाजार में जो है सजे पड़े हैं,
1: एकदम
0: और उनकी भीनी भीनी खुशबू से जो है मन में एक नई संचार पैदा होती है।
1: देखो अखनी मौसम ही छे, गर्मी चले ना, गर्मी साथे शुरू हो जाए, पहले तो एकदम गर्मी वाला जो है गर्मी ऋतु के जे मौसम छे, अथी ये सब्जी उब्जी छे, हवा भी जे छे, ओकरा बाद लीची, लीची तो कुछ दिनों के फल हो चन्नो भाई।
0: बिल्कुल।
1: आम ज्यादा दिन चले छे, देखो कि एकदम जनजीवन आम और लीची में एकदम डुबलो छे, खूब भरी दम खा रहलो छे। हालांकि आम के फसल कुछ कम होलो छ, लेकिन फिर भी जे छे आम लोग खा रहलो छे। और आम देखो कहलो जे छे कि फलों का राजा हो छे।
0: जी।
1: और लीची भी स्वास्थ्य वास्ते बहुत लाभदायक छे, हालांकि लीची थोड़ा महंगा हो छे।
0: जी।
1: लीची खेती भी कम हमरा सनिक हो छे, खास करी के बिहार के कुछ जिला में तो ज्यादा हो छे, लेकिन हमरा सनिक बाका होले भागलपुर के कुछ जिला में खेती हो छे। आरो बड़ा पैमाना पर लीची खेती जो करलो जाए तो
0: मुजफ्फरपुर,
1: हाँ मुजफ्फरपुर तक लीची खाने छे।
0: जी।
1: आरो देखो कि है मौसम जे छे आजकल एकदम जे करवट ले छो, कुछ राहत जनक अपने बोललो, जनक हमरा सनिक आवे छलिए अखनी

0: तो देखो कि मेघाना मौसम हो गया
1: जी
0: लगले के भी छाता ले लो जाए,
1: बिल्कुल। और छाता के साथ साथ हम लोगों को यह भी लगता है मन्नो भाई कि अचानक बारिश हो जाए तो उससे कभी कभी होता क्या है ना मन्नो भाई कि बारिश तो ठीक है, बारिश से हम लोगों को राहत भी मिलती है, लेकिन बारिश के साथ साथ अचानक जो वज्रपात होता है उससे, जिसे ठनका भी कहा जाता है, उससे भी हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है।
0: अपने अच्छा बात करो, खूब अच्छा बात करो मन्नो भाई। और जो है हमरा सिंह कहे वज्रपात से एकदम बचना है, कहना कि आजकल जो है कुछ सालों से देख लो जाए छे कि ठनका के समस्या
1: ज्यादा बढ़ गई है,
0: प्रकोप ज्यादा है, ये अवस्था में बची रहना है।
1: और खास करके हमारे किसान भाई जो है मन्नो भाई, वो जैसे अभी कृषि कार्य, चूंकि मानसून का आगमन हो ही चुका है, तो वे कृषि कार्य में अब लगातार अपने खेतों में रहते हैं, ऐसे में अचानक वर्षा होने के साथ साथ जो वज्रपात होती है तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है उस समय। अनावश्यक रूप से किसी पेड़ के पास ना ठहरे, क्योंकि पेड़ पर भी ठनका गिरने का ज्यादा प्रभाव
0: बिल्कुल ज्यादा डर रही है। देखो जो ठनका गिर आदमी मरिए जैसे इतना गरम ज्यादा वोल्टेज रही है बिजली के
1: जी।
0: और देखो शरीर जो स्वस्थ रहता हूँ आम लीची से या अनाज खेला से
1: जी,
0: और तब हम शरीर चमकता हूँ, लेकिन त्वचा संबंधी बहुत तरह बीमारी भी हो जाए छे।
1: बिल्कुल,
0: जना कि सफेद दाग हो गलो
1: जी,
0: या आरो घाव नुचनी घुमची हो गले होरा सा, लेकिन कोई कोई बीमारी जे छे खानदानी होय छे, आनुवंशिक होय छे।
1: बिल्कुल,
0: देखबो कि बाजार या कहूं देहात में कोई कोई एहनो व्यक्ति होय छे कि उनको पूरा शरीर एकदम उजरो उजरो लगता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है ना। और उन्हें देखियो धूप धाप पर एकदम हैरा आंख चुंधियाए चलता हूं, उनका कम नजर रहता,
1: क्योंकि उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो है उन्हें आंखों से कम रोशनी दिखाई पड़ती है।
0: और उनको जो त्वचा शरीर के होय छे एकदम उजला उजला होय छे, तो आरो है बीमारी बड़ा मना ज्यादा है, छुआछूत की बीमारी तो नहीं है, लेकिन
1: मन में लोगों का यह धारणा बन जाती है कि जिन्हें भी यह बीमारी है उनसे थोड़ा दूरी वहां बरतना लगता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बीमारी से बात याद आई मन्नो भाई कि आज अंतर्राष्ट्रीय रंगहीन जागरूकता दिवस,
0: रंगहीनता
1: जी, रंगहीनता व जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है।
0: अच्छा, जिसे है वही बीमारी से संबंधित क्योंकि
1: बिल्कुल
0: अच्छा अच्छा,
1: जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस भी कहा जाता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 13 जून को मन्नो भाई यह दिवस मनाया जाता है।
0: अच्छा, पूरा दुनिया मने लो
1: जी,
0: और मतलब कि पूरा दुनिया में बीमारी का असर दिखलो जाए छे, प्रकोप दिखलो जाए छे।
1: और यह दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है मन्नो भाई
0: जी जी,
1: वह है लोगों को रंगहीनता के बारे में जागरूकता फैलाना, जागरूकता बढ़ाना, और साथ ही साथ जो एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक रोग जो होता है, जिसमें कहीं ना कहीं जैसा कि अभी हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि मनो में यह धारणा बन जाती है कि जिन्हें भी यह रोग से जो पीड़ित है उन्हें उनसे जो है थोड़ा मतलब दूरी बरतने
0: दूरी बने लगते हैं लोगों के मन में है कि पूर्व जन्म के पाप छिके
1: जी,
0: एनो को बात
1: जबकि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक अनुवांशिक रोग है मुख्य रूप से, जिसमें शरीर में मेलानिन नामक रंग द्रव्य की कमी या फिर अनुपस्थिति हो जाती है। और मेलानिन तो हम लोग जानते ही हैं कि मेलानिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। मेलानिन की कमी से जो है त्वचा का रंग सफेद हो जाता है और बालों और आंखों में भी जो है उसका जो है उसके कारण थोड़ा
0: बिल्कुल
1: कम दिखाई देने लगता है।
0: जी अपने कह लो मेलानिन यही वस्तन जैसे अपना सिंह आंख के डिम्मी जो है काला हो छे, बाल काला हो छे,
1: बिल्कुल,
0: या जहाँ जहाँ मतलब शरीर के त्वचा में रंग अलग हो छे
1: जी,
0: है मेलानिन।
1: शरीर में रंग से संबंधित जितने भी तरह के जो हमारे तत्व पाए जाते हैं वो इस मेलानिन के द्वारा ही पाया जाता है।
0: है जैसे अनुवांशिक हो छे, केकरो माता पिता में जो मेलानिन की कमी हो गलो बच्चा पर असर पड़े छे
1: बिल्कुल,
0: और उनका है बीमारी से ग्रसित हो पड़े छे, लेकिन त्वचा के रंग के साथ आरो कोई तरह के भी दिक्कत है ना आदमी का नहीं हुई छे, कि
1: मतलब
0: बुद्धि खराब छे, व्यवहार खराब छे, या दिमाग से कमजोर छे, ऐनो से कोई बात
1: नहीं होता हुई छे। और अच्छा, कुछ लोगों को
0: ऐनो बात नहीं छे कि आंखों से भी कम दिखाए
1: जी,
0: आंखों से ठीके दिखाए छे
1: जी,
0: लेकिन धूप में
1: थोड़ा सा परेशानी धूप में होती है। और एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता से प्रभावित लोगों में जो होता है मन्नो भाई, वो सामान्यता यह होता है कि त्वचा का रंग बहुत हल्का हो जाता है, जैसा कि अभी हम लोग कह ही रहे थे, आंखों की दृष्टि थोड़ी कमजोर हो जाती है जैसा कि आप बता ही रहे थे
0: धूप
1: में
0: जी,
1: और अंधेरा में भी हल्का जो है देखने की क्षमता कम हो जाती है। और जैसे सूर्य की किरणों के प्रति संवेदनशीलता अधिक होती
0: अधिक
1: है,
0: अधिक हो जाए। कह लो जैसे अनु भाई
1: जी
0: कि अधिक धूप में जैसे इन व्यक्ति का त्वचा कैंसर होने की भी संभावना रहे
1: जी। और मन्नो भाई यह एक संक्रामक रोग नहीं है, जैसा कि हम लोग कह ही रहे हैं कि ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, छुआछूत वाला रोग नहीं है कि अगर साथ में आप किसी के बैठ के खा

0: अपने
1: या फिर पानी पी लिए तो आपको
0: हाँ
1: भी हो जाएगा,
0: नहीं।
1: ऐसा बात नहीं
0: और
1: है।
0: वो एकदम है पूर्व जन्म के पाप के कमाए भी एकदम नहीं छिके है
1: बिल्कुल, यह जो
0: जैसे
1: अंधविश्वास फैला हुआ है मन्नो
0: हाँ
1: भाई,
0: है
1: यह
0: मनुष्य
1: बिल्कुल
0: निकाली देना
1: गलत
0: चाहिए
1: अंधविश्वास है।
0: बिल्कुल।
1: और प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसके लिए जो है बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि
0: जी
1: मन में जो भ्रांतियां फैल जाती है एक बार मन्नो भाई,
0: जी जी
1: तो वो जल्दी मन से निकलता
0: हटता ही
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: चाहिए
1: और खास
0: बिल्कुल
1: करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यह बात जो है और भी आग की लपट की तरह फैलती है,
0: हाँ
1: कुछ
0: हाँ
1: भी अंधविश्वास बात जैसा भी हो जाता है।
0: जी जी
1: तो प्रत्येक दिवस को मनाने के पीछे जो है मन्नो भाई कुछ न कुछ इतिहास उसका जरूर होता है।
0: बिल्कुल
1: इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता दिवस मनाने का उद्देश्य भी जो है 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी मनाने की घोषणा की गई थी, ताकि
0: अच्छा
1: समाज में
0: हाँ हाँ
1: जो कुरीतियां ये फैली है छुआछूत या फिर रंग वर्ण के आधार पर जो भेदभाव किया जाता
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: यह सरासर गलत है, और इसको
0: और
1: मिटाने के लिए ही जो है यह राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता दिवस
0: एकरो
1: वर्ष
0: खिलाफ जैसे
1: 2014 से
0: लोगों में
1: मनाया गया।
0: जागरूकता फैलल हो जाए
1: जी
0: कि है भेदभाव नहीं करना चाहिए और की सही बात छे की वास्तविकता छे हो लोगों को जानना चाहिए ये वास्ता ही
1: बिल्कुल
0: दिवस मनेलो जाए छे बड़ा अच्छा
1: बिल्कुल।
0: बात।
1: और इस दिवस को मनाने का एक और उद्देश्य है कि एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों को मानवाधिकार की रक्षा करना और उनके साथ होने वाले जो है भेदभाव को भी और हिंसा को भी रोकना। अब
0: बिल्कुल
1: देखा जाता है मन्नो भाई कि
0: हाँ
1: कहीं कहीं यह भी होता है कि अगर शरीर का जो है रंग
0: जी जी
1: अब दूसरे रंग से जो है प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब अलग है, तो उसके प्रति लोगों की एक अलग धारणा बन
0: धारणा
1: जाती
0: हुई
1: है,
0: हाँ
1: जबकि ये गलत है।
0: कहता हूँ कि है अंग्रेज छिके ऊपर
1: जी
0: आदमी छिके लेकिन
1: जी
0: से बात
1: और
0: नहीं छे
1: नस्लीय भेदभाव का सामना भी करना
0: हाँ
1: पड़ता
0: आरो
1: है।
0: यो बात छे कि है दिवस मनाए के यो मतलब होले छे अनु भाई कि हुनका समान अवसर दिलो जाए
1: बिल्कुल
0: कहना कि रंगहीनता से जो ग्रसित आदमी होइ छे हुनका भी जीवन जिए के और जीवन में सम्मान पावे के पूरा पूरा अधिकार छे जना कि अन्य आदमी छे छे कि नहीं।
1: बिल्कुल
0: तो हमरा सनी आखना जे छे रंगहीनता अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस जे छे एकरा हमरा सनी कहे जागरूकता जरूर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मन्नो भाई इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जा रहा है
0: हाँ
1: इस वर्ष की थीम है अपनी त्वचा पर गर्व, या जैसा
0: हाँ
1: कि हम लोग कह ही रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का
0: किसी
1: किसी भी
0: भी
1: वर्ण के हों,
0: हाँ हाँ
1: इससे आपके मन में जरा भी जो है हीनता
0: हीन
1: की
0: भावना
1: भावना
0: नहीं
1: नहीं
0: होना
1: आनी
0: चाहिए।
1: चाहिए, क्योंकि जो भी शरीर का रंग होता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और यह थीम लोगों को अपनी पहचान और व्यक्तित्व पर गर्व करने तथा जो है रंग या शारीरिक विशेषताओं के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करने का भी संदेश देती है।
0: जी
1: और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है मन्नो भाई
0: हाँ हाँ
1: यह हमें संदेश भी देता है कि हर व्यक्ति चाहे इसका रंग रूप या शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, उन्हें भी समान अवसर और समान अधिकारों का हकदार है वे भी।
0: बिल्कुल
1: और यह दिवस विविधता को स्वीकार करने, मानवाधिकारों की रक्षा
0: हाँ हाँ
1: और अधिक समावेशी समाज बनाने की प्रेरणा भी देता है मन्नो भाई।
0: जी
1: इसलिए तो कहा भी जाता है कि ये मानवता का असली रंग जो है वो समानता, सम्मान और प्रेम होता है।
0: बिल्कुल वाह कितना अच्छा आपने बात कहलो अनु भाई। और देखो आखना जैसे है जी अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस छे है
1: जी
0: दिवस हमरा सनी शपथ ले छे कि एहनो व्यक्ति जे छे रंगहीनता से शिकार जे छे हुनको खिलाफ कोई भी हमरा सनी भेदभाव नहीं करबे हुनका से कोई भी भेदभाव नहीं करबे मिलीजुली करबे और हुनका भी समाज में एकदम सम्मान के साथ जिए के सम्मान के साथ हुनका साथ जीबे और हुनका भी जियल देबे छे कि नहीं।
1: बिल्कुल
0: तो इतना अच्छा चर्चा होले अनु भाई
1: बिल्कुल
0: और अपने रहा कुछ गीतनाथ के भी कुछ देखे
1: जी,
0: विचार छो
1: संध्या
0: तो
1: का समय हो ही चला है
0: हाँ
1: मन्नू
0: हाँ
1: भाई, तो अब सांध्यकाल की सभा में जो है हमारे घर में माताएं बहनें भी जो है संध्या
0: संध्या दे छे
1: देते
0: बिल्कुल
1: हैं, तो हम लोग भी संध्या के समय में एक देवी गीत सुन लेते
0: आओ
1: हैं।
0: सुने छे देवी गीत।

0: वाह अन्नो भाई,
1: जी
0: एकदम मन पवित्र हो गेलो, वातावरण पवित्र हो गेले, इतना सुंदर अपने देवी का सुनेलो, और हमरा से आगू बढ़ भाई की
1: जी और अब क्यों न पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को सुन लें।
0: संदेश सुनी ओकरो बाद फिर हमरा से आगू बढ़ भाई कार्यक्रम में।
1: जी
2: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच।

0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हाँ, भाई
3: महत्वपूर्ण संदेशों के बाद हम लोग अपने श्रोताओं का फिर से स्वागत करते हैं।
2: स्वागत करे छे, देखो कि अपने जो कह लो कि आम लीची
3: जी
2: छे कि नहीं, और देखो कि आम लीची में जो पौधा पेड़ पौधा हो चुके मधुमक्खी छत्ता लगे थे
3: जी।
2: मधुमक्खी जब भी रहता हूँ बाग बगीचा में ही जहाँ फूल
3: जी,
2: आरो एकरा साथा साथ जे छे बगीचा में या जंगल में आरो भी जीव जंतु रहे छे।
3: और आम के गाछ पर इस समय जो है
2: हाँ,
3: कोयल भी बैठ के अपने जो है
2: हाँ, अपना
3: किलकारी करती है
2: हाँ,
3: कौवा भी करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो है मन्नो भाई वृक्ष पेड़ पौधे से
2: हाँ,
3: वन्य जीव का लगाव ऐतिहासिक रूप से जो है प्राचीन काल से ही है।
2: और देखो जंगल में आरो भी जीव जंतु रहे छे
3: जी,
2: जीव जंतु जे छे जंगल वास्ता बहुत ही मना आवश्यक
3: अमूल्य धरोहर होते हैं।
2: और जंगल में रही कहुनी प्रकृति का जे वातावरण का जिकरा कहे छो अपने
3: जैव विविधता को भी बनाए रखते
2: हैं, बनाए रखे छे ये वास्ता वन्य प्राणी प्रकृति वास्ता बहुत ही आवश्यक छे, बहुत जरूरी छे। अपने जे छे कुछ ओकरा पर विशेष सुनवाओ अपना श्रोता भाई बहनी का
3: जी बिल्कुल। आइए वन्य प्राणी प्रकृति के अमूल्य धरोहर इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
2: और जानकारी दे रहे छो
3: रविंद्र कुमार सिंह जी।
4: तो पूरी सृष्टि ही प्रकृति की सुंदर रचना है, किंतु समस्त प्राकृतिक प्राणियों में वन्य प्राणी प्रकृति की गोद में निवास करने, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करने एवं पर्यावरण संतुलन में सहयोग करने के कारण विशेष स्थान रखते हैं। इन समस्त प्राणियों को संभाव से देखना वैदिक काल से ही भारतीय दर्शन रहा है। इस उपनिषद में वर्णित एक श्लोक का अर्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड तथा इसके समस्त प्राणी प्रकृति की संपत्ति हैं, अर्थात कोई प्राणी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, अतः प्रकृति पर समस्त प्राणियों का समान अधिकार है। वन्य प्राणी का तात्पर्य सामान्यतया ऐसे जानवर व अन्य प्राणी से है जिन्हें मनुष्यों द्वारा पालतू न बनाया गया हो अथवा जो अपने प्राकृतिक वास स्थानों में पाए जाते हैं। ये वन्य प्राणी संसार के सभी परितंत्रों इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान वन घास भूमि मैदान पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल हैं। सिंह बाघ हाथी सियार सुअर लकड़बग्घा जैसे कुछ वन्य प्राणी यदि जंगलों पर्वतों में रहते हैं तो गिलहरियां कबूतर चमगादड़ जैसे वन्य प्राणी शहरों में भी बसते हैं। इस पृथ्वी पर प्रकृति विभिन्न जलवायु वाले भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित ढंग से रहने के अभ्यस्त जीवित प्राणियों का एक विषम जाल प्रस्तुत करती है। इन प्राणियों का जल चक्र कार्बन चक्र खनिज चक्र जैसे कई जैव भू रासायनिक चक्रों के द्वारा वातावरण के साथ आवश्यक तत्वों के लेन देन का चक्र सतत चलता रहता है और इस तरह पृथ्वी का संपूर्ण जीवन आपस में जुड़ा रहता है। प्राणियों का यह संतुलन एक प्राकृतिक विरासत है, एक ऐसी विरासत कि मानव जाति स्वयं अन्य प्राणियों की जातियों की तरह जीवित रहने हेतु संपूर्ण प्रणाली पर निर्भर रहती है। वन्य स्तनधारी प्राणियों में हाथी विशाल और आकर्षक प्राणी है जो भारत में प्राचीन काल से ही शाही समारोहों की शान रहा है। गणेश का मुख हाथी का होने के कारण इसे शुभ माना जाता है। शक्ति के प्रतीक के रूप में सिंह स्थापित है जो अपने शारीरिक सौष्ठव के कारण जंगल का राजा और शक्ति की देवी दुर्गा की सवारी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी तरह कितने वन्य प्राणी ऐसे हैं जो अपनी खूबियों और खूबसूरती के कारण मानव समाज एवं संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे वन्य प्राणियों में हिरण खरगोश बाघ चीता प्रमुख हैं। जानवर की तरह पक्षी का भी प्राचीन काल से ही मनुष्य से अटूट नाता रहा है। पक्षी जहाँ एक ओर हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन में मदद करते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों मक्खी मच्छर इल्ली दीमक को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। चील गिद्ध कौवा पक्षी पर्यावरण के सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। ये मृत पशुओं तथा गंदगी को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। शक्करखोरा फूलचूही जैसी कई चिड़ियां फूल के पराग

को दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं और परागण की क्रिया में मददगार साबित होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो वृक्षारोपण के कार्य द्वारा वन को समृद्ध करते हैं। ये पक्षी कठोर आवरण वाले बीजों को खाते हैं तो उनका आवरण हट जाता है और उनके बीज के साथ निकले बीज सरलता से जमीन पर उग जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पक्षी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमें सूचना भी देते हैं। जिस क्षेत्र में कोयल और खंजन दिखे वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त तथा जिस क्षेत्र में हैरान स्टिल्ट जैसे पक्षी दिखे वह क्षेत्र प्रदूषित होने का सूचक माना जाता है। इस तरह यह कहना सही है कि पक्षी मानव बिना जीवित रह सकता है, किंतु मानव का पक्षी बिना जीवित रहना कठिन है। आज मानव की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त वनों का कटना, समुद्री तट का अतिक्रमण करना, वन्य प्राणियों का शिकार करना, कृषि उद्योग परिवहन के लिए प्राकृतिक वास स्थान का घटना, जल विद्युत परियोजना के कारण प्राकृतिक वास स्थान को क्षति पहुँचना, पर्यावरण के अनेक अजैव घटकों जैसे वायु, जल, मृदा के प्रदूषण से अम्ल वर्षा एवं ओजोन परत का अपक्षय जैसी स्थितियों का उत्पन्न होना, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा का आना, ये सभी ऐसे कारण हैं जिनसे वन्य प्राणियों की प्रजातियों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इस ह्रास से जैव विविधता में कमी आई है। एक अनुमान के अनुसार वन नाशन से उत्पन्न भूमंडलीय तापन से जानवरों और पौधों की 12,000 प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की कुल पक्षी प्रजातियों में से 72% पक्षी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार विलुप्त होते जा रहे वन्य प्राणी का संरक्षण कैसे हो, यह वैश्विक चिंता का विषय है। पूरे विश्व में वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्रियाशील हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने भी कई ठोस कदम उठाए हैं। इसने वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की और राष्ट्रीय स्तर पर वन सेवा की शुरुआत की। भारत के सभी प्रदेशों में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय वन विभाग भी स्थापित है। वन सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना भी की गई है। संसद द्वारा वन्य जीवों से संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बनाया गया। इसके अलावे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जैसे कई कानून वन्य प्राणी एवं पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित बनाए गए हैं। पूरे देश में वानिकी शिक्षा के विस्तार के लिए 8 भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। संकटग्रस्त प्राणियों को 8 श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे रेड डाटा सूची की संज्ञा दी गई है। इससे काला हिरण, एक सींग वाला गैंडा जैसे संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है। बिहार में तरुमित्र, प्रतिवेश तथा प्रयास नामक गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना, घड़ियाल तथा हिम तेंदुआ के लिए क्रमशः घड़ियाल और हिम तेंदुआ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां के प्रजनित बच्चों को बाद में प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाता है। भारत में वन्य प्राणियों एवं उनके वास स्थानों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान या विहार तथा वन्य जीव अभयारण्य या शरण स्थल स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 92 उद्यान तथा 500 वन्य जीव अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणियों, वनस्पतियों तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखने के कानूनी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्राणी की किसी प्रजाति को मारना दंडनीय अपराध होता है। हिरण, नीलगाय एवं अन्य प्राणी के लिए हजारी बाघ, हाथी जैसे प्राणी के लिए डाल्टनगंज स्थित बेतला, उत्तरांचल राज्य के नैनीताल स्थित कार्बेट, बाघ तेंदुआ जैसे वन्य प्राणी के लिए मध्य प्रदेश के मांडला स्थित कान्हा, विशेषकर बाघ के लिए पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन, बाघ, चीतल, सांभर जैसे प्राणी हेतु मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शिवपुरी, हाथी एवं अन्य प्राणी के लिए असम स्थित मानस, बाघ के लिए राजस्थान स्थित रणथंभौर,

0: पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध बिहार राज्य के दरभंगा स्थित कुशेश्वर स्थान तथा बेगूसराय जिला स्थित कांवर क्षेत्र, ये सभी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनके सहज प्राकृतिक विकास का वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। जंतु अभयारण्य प्रशासकीय आदेश से सुरक्षित ऐसे क्षेत्र को जंतु अभयारण्य कहा जाता है, जहां वन्य प्राणी अपने प्राकृतिक वास स्थानों में सुरक्षित रहा करते हैं। ऐसे अभयारण्य में लुप्त होने के कगार पर पहुंचे प्राणी की प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। असम स्थित काजीरंगा, तमिलनाडु स्थित अनामलाई, गुजरात स्थित गिरवन, कर्नाटक स्थित बांदीपुर, तमिलनाडु के नीलगिरी स्थित मुदुमलाई, उड़ीसा स्थित चिल्का झील, राजस्थान के भरतपुर शरण स्थल देश के ऐसे मुख्य शरण स्थल हैं, जहां संकटापन्न पशु पक्षी के संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। वन, वन्य प्राणी, पर्यावरण, मानव सभी अंतर संबंधित हैं। इन सब के बीच संतुलन का होना परम आवश्यक है। अतः समाज में इन सब के प्रति जागृति पैदा करने का प्रयास होना चाहिए। विश्व स्तर पर 26 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस जैसे कई दिवस मनाए जाते हैं, जो हमें प्रकृति, पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी का बोध कराते हैं। ऐसे अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्राकृतिक संतुलन की दिशा में कारगर कदम उठाने की चेतना जागृत करने की जरूरत है। कुल भूभाग के अपेक्षित 33% की जगह मात्र 19.39% भूभाग में ही स्थित वन जैसी प्राकृतिक संपदा के विनाश, विवेकहीन दोहन तथा कुप्रबंधन से हम वर्तमान समय में संकट झेल ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी समस्या एवं संकट पैदा कर रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के सहारे हम चाहे जितनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएं, पर प्रकृति के प्रतिशोध से नहीं बच सकते। उत्तराखंड की विनाश लीला इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रकृति का विनाश करके हम अपने भविष्य का विनाश कर रहे हैं। वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण करके ही हम अपने आधुनिक वैज्ञानिक विकास को आधार दे सकते हैं, स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
1: हाँ, बड़ा ही अच्छा आपने वार्ता सुन भेलो, वन्य प्राणी प्रकृति के अमूल्य धरोहर
2: जी,
1: इतना सुंदर वार्ता वास्ता वार्ताकार का हमरा सनी बहुत बहुत धन्यवाद दे छे
2: जी।
1: और अब जे छे कुछ लोक गीत वगैरह भी गीतनाद हमरा सनी का श्रोता भाई अपने सामने रख,
2: बिल्कुल
1: कुछ वातावरण
2: जी
1: और कुछ मन एकदम गदगद हुआ
2: जी,
1: छे कि नहीं?
2: तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा लोक भजन।
1: आवा सुनिए।

0: तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
3: Nexa.
4: जी, महत्वपूर्ण संदेशों के बाद हम लोग अपने श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत करते हैं, और अब कुछ मौसम सूचना भी हम अपने श्रोताओं को दे देते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 13 जून से 17 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिले में 1 से 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ, आंधी के साथ, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि भागलपुर और बांका में 13 और 14 जून को भारी बारिश होने की संभावना भी है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में इस दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का भी अनुमान है। और इस समय जैसा कि मानसून का आगमन हो चुका है तो हमारे किसान भाई अब कृषि कार्य भी तेजी से शुरू कर चुके हैं, तो धान की फसल के लिए लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे कि सबौर श्री, स्वर्णाश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा और BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें। स्वस्थ पौधों के लिए जो है नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से लेके 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार कर लें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। जितने क्षेत्र में धान का रोपण करना हो उसके दशांश यानी 1/10 भाग में बीज गिराएं। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें तो यह ज़्यादा कारगर होगा। वहीं जो किसान हमारे मक्का की कृषि कर रहे हैं तो खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करें।

0: अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे कि सुवान, देवकी, शक्तिमान प्रथम, शक्तिमान द्वितीय, राजेंद्र शंकर, मक्का तृतीय और गंगा 11 की बुआई ज्यादा कारगर रहेगा।
1: और है अनुभव जैसे बागवानी वास्ते
0: जी
1: जना कि प्याज होले खरीफ प्याज की खेती वास्ते नर्सरी जरा बीज स्थली कहे ओकरो तैयारी करना है और स्वस्थ पौधा के लिए नर्सरी में गोबर के खाद अवश्य डालना है।
0: जी
1: खरीफ प्याज के लिए N53 एग्री फाउंड डार्क रेड आर्का कल्याण भीमा सुपर किस्मा जैसी किस्म अनुशंसित है
0: जी।
1: आ प्याज के बीज की व्यवस्था भी प्रमाणित जो प्रमाणित स्रोत है वहीं से लेना है। आ बीज गिराए के पूर्व जो किसान भाई बीज उपचार जरूर करना है।
0: बिल्कुल।
1: आ बीज जो है बीज की दर जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रख। आरो देखो पशुधन जो होइ छै हमरा सनिके बहुत ही अमूल्य धन होइ छै। कृषि के साथ साथ पशु के पालन भी किसान भाई बहनी करै छै तऽ पशुपालन में जे छै गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव खातिर जे छै टीकाकरण जरूर करवाबह आ जितना भी दुधारू पशु छै हुनका टीकाकरण तो अवश्य से अवश्य करवाबह।
0: जी
1: नया गेहूँ के जे भूसा खिलाए के पहले जे हमरा सनि रोज कहता रहै छियै कि खिलाए के पूर्व जे छै 2 घंटा पानी में फुलाए के रखना छै आरो 50 ग्राम खनिज मिश्रण जे छै 50 ग्राम नमक के साथ जरूर मिलाव ताकि जे छै पशु स्वस्थ रह आरो अच्छा दूध भी दिया। तो है तो हो गेलै अनु भाई मौसम सूचना आरो जे छै अब हमरा सनी जे छै कुछो गीतनाद फिर सुनै छियै।
0: बिल्कुल।
1: अब हमरा सनी एकटा झूमर सुनै छियै।
0: बिल्कुल।
1: कलाकार छिके इंद्राणी सिन्हा जी।

0: अन्नू भाई
1: जान मारे ला हमरो
0: हाँ
1: कजरवा हो। जी
0: कलाकार छले
1: विवेकानंद ठाकुर जी, पूरे माहौल को
0: एकदम झुमाइत
1: कर दिया।
0: हाँ अरे देखो कि हमरा सनी खेती गृहस्थी में मौसम सूचना के साथ साथ जे छे कृषि समाचार भी दे छे।
1: बिल्कुल
0: देखे छो अपने कुछ मनारो कहे
1: जी कहे मैं यह कह रहा था मन्नो भाई कि देखिए मानसून का तो आगमन हो ही चला है, तो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाई जो है वो सब्जी की भी खेती बाड़ी करते हैं। तो सब्जी के लिए जो है वर्तमान परिस्थितियों जैसे कि मिर्च में विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए अनुकूल है
0: जी,
1: और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबाकर इसे नष्ट कर दें। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण हेतु इमिडा क्लोरोप्रीड 0.3 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, और यह छिड़काव जो है आसमान साफ रहने पर ही करें तो ज्यादा कारगर होगा। और खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी

0: की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य रूप से डालें तो ज्यादा कारगर होगा। खरीफ प्याज के लिए N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अरका कल्याण
1: जी
0: भीमा सुपर किस्म अनुशंसित है।
1: इसने ही बीज जे नस्ल अपने बतेलो किस्म हेकरे प्रयोग करना चाहिए
0: जी,
1: इस फसल ज्यादा हुआ
0: जी। इस किस्म का अगर प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं
1: जी
0: तो पैदावार भी ज्यादा होगा और कम समय में भी यह जो है
1: हाँ,
0: उत्पादन दे
1: और फसल भी स्वस्थ एकदम होता
0: जी और फसल भी स्वस्थ रहता है और ज्यादा इसमें कीड़े मकोड़े लगने की भी संभावना कम रहती है। और प्याज के बीज की व्यवस्था भी जो है हमारे किसान भाई
1: हाँ,
0: प्रमाणिक स्रोत से करें। ये नहीं कि आप किसी भी दुकानदार से जाकर ले लिए, अगर संभव हो तो जैसे हमारे सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जाकर भी जो है
1: हाँ,
0: कि हमारे किसान भाई जो है बीज उन्नत किस्म के बीज वहाँ
1: हाँ,
0: आवश्यक रूप से मुहैया हो जाती है।
1: देखो जहाँ से प्रमाणित स्रोत जैसे किसान भाई वहाँ तो आपने चिट्ठा भी देता हूँ लिखी
0: जी,
1: ओकरा में गारंटी भी रही भाई खराब नहीं होते फसल
0: बिल्कुल। और बीज गिराने के पूर्व जो है बीजोपचार भी कर लें और बीज की दर 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे तो सब्जी का उत्पादन भी बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से होगा। और कुछ किसान जो है वो सब्जी के साथ साथ हमारे पशुपालन की भी जो है वो पशुपालन भी करते हैं
1: जी जी।
0: तो पशुपालन के लिए जो है गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए
1: बीमारी है ना अनुभव
0: जी
1: घातक हो चाहिए यह अवस्था इसने से बची करना चाहिए
0: जी।
1: किसान भाई बहन उम्मीद है कि है बीमारी वास्ता से अपना पशु जी जरूर बचेते
0: और इसके लिए टीकाकरण भी कराएं।
1: अब जैसे देखो अनुभव हमारा सिंह कार्यक्रम के समय जो समाप्ति तो सबसे विदा ले छे सबका मनो के नमस्कार
0: और साथ में अन्नों का भी नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी, प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। नाथवाणी की जीत पर आश्वस्त। पेसा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभा

0: महिलाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रनों से हराया। छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की निरंतर प्रगति की कामना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।
1: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके 12 साल पूरे हुए हैं, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली, आज उनके दीर्घायु के लिए, ताकि देश और शक्तिशाली बने, देश आत्मनिर्भर बने, इसी ये आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगने आए हैं।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध माँ देवड़ी मंदिर पहुँचे। उन्होंने 16 बजे माँ देवड़ी की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हमारी पहचान है तथा माँ देवड़ी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। सरायकेला खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर राज्य में पेसा नियमावली लागू करने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने पेसा नियमावली को लेकर लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेसा का मूल उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करना और आदिवासी परंपराओं को सशक्त बनाना है। रामगढ़ जिले के अरड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में गए थे, जहां ऑक्सीजन की कमी या गैस रिसाव के कारण वे अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने पर कुजू पुलिस और नई सराय माइंस रेस्क्यू टीम ने बचाव अभियान चलाया और सभी को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आगामी 15 जून को देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा तथा परिसर में रंगोली सजाई जाएगी। इसके अलावा पौध वितरण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच, वृक्षारोपण और झारखंड की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
2: 15 जून को हम भारत के सभी एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मना रहे हैं और इस यात्री सुविधा दिवस को मनाने का जो कारण है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाना, उनके यात्रा को सुगम बनाना, सुरक्षित बनाना, और जो भी हमारे यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं या करते हैं, उनको उस दिन एक विशेष दिन का अनुभव हो।
0: रक्तदाता दिवस के अवसर पर कल झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार

0: चार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य में सिमडेगा जिले ने शत प्रतिशत सफलता हासिल की है। सीएमएमएस पोर्टल पर 9 जून तक प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार जिलों में यह कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि पदाधिकारियों और कर्मियों के बेहतर टीम वर्क के कारण कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह कार्य समय से पहले पूरा किया जा सका।
1: शत प्रतिशत हाउस लिफ्टिंग है वो कर लिया है और समय के पहले ही कर लिया है, तो इसी के रिकॉग्निशन में एक प्रशस्ति पत्र हम लोगों को दिया गया है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे अधिकारी और कर्मी आगे भी काम करते रहेंगे और भारत की जनगणना का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है उसमें हम सिमडेगा जिले को त्रुटि रहित ढंग से और बढ़िया तरीके से सिमडेगा जिले में ये काम कर पाएंगे।
0: धनबाद में पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जिले में 10 मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी और एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा उपायुक्त आदित्य रंजन ने सिम्फर ऑडिटोरियम में आयोजित पुस्तकालय से समाज तक एक पहल कार्यक्रम में दी।
2: सभी बच्चों को बताया गया कि लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा स्टेट लाइब्रेरी बहुत अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 लाइब्रेरी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का। कोशिश करेंगे कि सभी लाइब्रेरी 24 घंटे चले और बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले पढ़ाई का, और वैसे भी धनबाद के बच्चों का रिजल्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा रहता है, आने वाले समय में वो संख्या और बढ़े।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 14 जून तक कई मेमू ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कारण चाकुलिया टाटानगर, टाटानगर बड़बिल, बड़बिल टाटानगर और टाटानगर चाकुलिया मेमू ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में रद्द किया गया है। मौसम। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित रूप से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड प्रीमियर लीग 2026 में आज खेले गए सातवें मुकाबले में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोयलांचल सुपर किंग्स ने निर्धारित ओवरों में मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में रांची टाइटंस लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। वहीं टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला रांची में छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की प्रगति के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, नाथवानी की जीत पर आश्वस्त। पेशा नियमावली को लेकर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर जनजातीय समुदाय को अधिकार और स्वशासन से जोड़ा जाएगा। रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गैस रिसाव के कारण हुई 4 लोगों की मौत। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 19 जून तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी। और झारखंड प्रीमियर लीग में कोयलांचल सुपर किंग्स ने रांची टाइटंस को 64 रन से हराया, छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार सचिदानंद सिंह की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए एक देवी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार सच्चिदानंद सिंह की प्रस्तुति। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक लोक भजन।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार सच्चिदानंद सिंह की प्रस्तुति, आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित। कहा, दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बिहार में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को विकास की महत्वपूर्ण शर्त बताते हुए कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने गंगा तट क्षेत्र के समग्र विकास, पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक पहचान के पुनर्स्थापन और राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता

0: परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
1: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके निर्वाचन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। बाद में अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश अपने पूरे कार्यकाल तक मंत्री बने रहेंगे।
2: एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया, नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद का शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। तो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर कभी शंका करने का काम मत करिए।
0: एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार कंगाल होने के कगार पर है। गया में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।
3: डबल इंजन सरकार है, ऐसे यहाँ पैसा की कमी नहीं है, पैसा सब आ रहा है। जब डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर, तो सम्राट चौधरी को यानी बिहार सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं होगी।
0: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।
4: लोकतंत्र में बातों को रखना चाहिए, जानकारी भी लेना सही रहे, बयान देना एक अलग चीज है, कोई आदमी बयान दे सकता है जाकर। सच्चाई यह है कि आज बिहार में समय पर अधिकारियों को वेतन मिल रहा, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार में तेज रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में खुशहाली है, शांति है, कानून का राज है, बिहार का विकास हो रहा है, सबों को पेंशन भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है और डेवलपमेंट का काम भी जारी है।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है।
5: खजाने की चिंता तेजस्वी जी नहीं करें, सम्राट चौधरी जी बिहार की चिंता कर रहे हैं। हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है एक दिन में 1100 रुपया प्रति व्यक्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से भेजा और सारी योजनाएं जो लोक हित की योजनाएं वो चल रही है। सम्राट चौधरी जी की सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है, लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है, इसलिए आम जनता की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनकी सरकार कर रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विनिर्माण सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75%

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के कायम नगर के अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शामिल हैं। 22 वर्षीय दानिश वर्ष 2025 में वायुसेना में शामिल हुए थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार में 3,14,000 दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज की गई है। नव नालंदा महाविहार के कुलपति तथा मिशन के बिहार क्लस्टर निदेशक प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि इनमें से कई पांडुलिपियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। उन्होंने बताया कि 15,000 से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कुख्यात अपराधी संतोष यादव के पटना और नालंदा स्थित 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हथियार तस्करी, अवैध संपत्तियों और आय के स्रोतों की जानकारी जुटाने के लिए यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान जमीन, वित्तीय लेनदेन, संपत्ति से जुड़े कागजात और बेनामी संपत्ति की जांच की गई। पटना के बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर बेल्ट्रॉन कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। आग लगने के कारण कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
2: आग को कंट्रोल करने में पूरा 45 मिनट लगा था, बाकी धुआं वगैरह था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। हमारी 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां और 12 वाटर टेंडर और वाटर बाउजर गाड़ियां थी।
0: कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरापगंज के पास NH-31 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GNCH पूर्णिया रेफर किया गया है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा से पुलिस ने 419 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि गांजा की तस्करी में डायल 112 के चालक की संलिप्तता पाई गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 10.5 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के

0: मार्जिन के एवज में घूस ले रहा था। धान खरीद में अनियमितता बरतने के आरोप में बांका जिले के चुटिया बेलारी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शाहबाज को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पैक्स अध्यक्ष पर 50 लाख रुपए मूल्य की धान की हेराफेरी का आरोप है। समस्तीपुर जिले के बढ़ोना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत शेखपुरा जिले के मदारीपुर गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बेतिया पहुंचने पर उनका बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग निवेश रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित। कहा, दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार। स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
6: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
7: राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई वर्षों के बाद इस बार जिले में मॉनसून समय पर पहुंचा है। मॉनसून के आगमन के साथ ही कृषि कार्यों में तेजी आ गई है और किसान बड़े उत्साह के साथ खेतों में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि यह समय धान के बिचड़े डालने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। समय पर हुई बारिश ने खेतों में नमी बढ़ा दी है, जिससे धान के बिचड़े डालने की तैयारी को गति मिली है। भारत सरकार द्वारा भोजपुर के ननौर गांव निवासी भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। लोगों ने भोजपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कलाकार को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। शाहाबाद की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और गुरुजी तथा साजा बाबा के नाम से प्रसिद्ध लोक गायक भरत सिंह भारती ने पद्मश्री सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने भोजपुरी भाषा, लोक गीतों और सांस्कृतिक मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि भोजपुरी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और

0: जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भोजपुर जिले में इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जन समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों की सराहना की है। लोगों का मानना है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सरकार भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रही है। असम के जोरहाट में हुए विमान हादसे में वायु अग्निवीर 22 वर्षीय दानिश आलम की मौत हो गई। दानिश भोजपुर जिला के कोइलोर थाना अंतर्गत कायम नगर के रहने वाले थे और अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। हादसे में उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा है और लोग सांत्वना देने पहुँच रहे हैं। भोजपुर जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गृह विभाग कारा तथा परिवहन विभाग में सिपाही पदों पर नियुक्ति के लिए 14 जून और 17 जून को दो दो पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मानवेंद्र कुमार राय ने बताया कि प्रत्येक पाली में 11,424 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को परीक्षा संयोजक, नोडल पदाधिकारी और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिले के राजापुर पंचायत में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। उनके साथ बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया भी उपस्थित रहे। इस दौरान राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल और कृषि सहित विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए। ग्रामीणों ने सीधे अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचे। इधर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन के डिजिटाइजेशन तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% निष्पादन के निर्देश दिए। बीते दिनों बिहिया में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता द्वारा बाढ़, सुखाड़ और हीट वेव जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह अद्यतन और सक्रिय रखें। अपर समाहर्ता ने विशेष रूप से राहत सामग्री, नावों की उपलब्धता तथा मेडिकल किट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के बाद उन्होंने बिहिया अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। भोजपुर जिले के विभिन्न अनुमंडलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के तहत प्रशासन की टीम द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से सड़कों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान जहां जहां अतिक्रमण पाया जा रहा है वहां तत्काल प्रभाव से उसे हटाकर मार्गों को खाली कराया जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायिका मृदुला कुमारी मार्तंड की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए महादेवी वर्मा का लिखा गीत।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका मृदुला कुमारी मार्तंड की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में है। याद होगा आपको, हर साल इसी महीने से ये कार्यक्रम आने वाले कुछ महीनों तक आप सुनते हैं और बातें हम करते हैं टेक्निकल पढ़ाई की। टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, जो अगर आपने टेक्निकल पढ़ाई कर ली तो पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के बाद रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। खास करके हम BCA BBA की बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ी बहुत बात करेंगे MCA MBA और BEd की भी। हाँ, ढेर सारी बातें होंगी, अभी ये सिलसिला चलेगा। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं पिछले 27 वर्षों से आप युवाओं के साथ खड़ा जो संस्थान है BCA और BBA को लेकर, आर्किड बिजनेस कॉलेज। जी हाँ, आर्किड बिजनेस कॉलेज जो कि आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। और आपको बताएं कि ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
2: इसलिए BCA और BBA अगर जो आपको करना होना तो नंबर डायल कर सकते हैं 7520800800। जी हाँ, यानी 7520-800-800। आज हमारे साथ हैं, हाँ, इस आर्किड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर संस्थापक आशीष आदर्श जी, जो करियर काउंसलर भी हैं। ढेर सारी बातें आज इनसे करेंगे कि BCA BBA या MCA BEd MBA, हाँ, आर्किड ग्रुप के ये जो कॉलेजेस हैं ना, ये जो और कुमार रोड, सगुना मोड़ और ABC, हाँ, भी कॉलेज है नेवरा में, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है इनका आज के उड़ान कार्यक्रम में। आशीष जी, एक बात बताइए, 27 वर्षों से आप इस संस्थान को चला रहे हैं, जी हाँ, BCA और BBA को लेकर, हाँ, क्या सोचा था, कैसा लगता है, या सीधे सीधे अपना अनुभव बताइए।
5: जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमारा संस्थान पहला संस्थान है बिहार का जिसने वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज बिहार में शुरू किया। BCA और BBA जैसे कोर्सेज को कोई नहीं जानता था उसके पहले। बात 1998 की है, उस समय में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया और ला करके पहला संस्थान बना ये बिहार का जिसने BCA और BBA जैसे संस्थान पाठ्यक्रम शुरू किए। पहले हमारा संस्थान मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड था, संबद्ध था। बाद में 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एक नई बनी और मगध विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज थे जो पटना के,

0: वो सब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए और हम भी उसी में हैं। और आपको मैं बता दूं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार का यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से BCA BBA पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त है। आपने कई बार देखा होगा, कई कॉलेजेस हैं पटना के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां आए दिन हल्ला हंगामा होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन सब बातों को लेकर के एक आर्केड बिजनेस कॉलेज की एक अलग पहचान है, एक अलग विश्वसनीयता है और बिल्कुल अलग तरीके से ये काम करता है। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ 10,000 से अधिक स्टूडेंट, सफल स्टूडेंट्स।
1: बहुत खूब आशीष जी, ये बहुत बड़ी बात है। 27 वर्षों से BCA और BBA को लेकर आप युवाओं के बीच में हैं और 10,000 से ज्यादा जो BCA और BBA कर लिए युवा हैं आज रोजगार में हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज और उसी गुणवत्ता के साथ आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पर बना हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उस जमाने में, आज तो कहा जाता है टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, हाँ टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और रोजगार के लिए सुनिश्चित हो जाइए, लेकिन उस जमाने में क्या दूरदर्शिता दिखाई आपने? एक बात हमें बताइए कि बिहार के किस जिले से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, उनमें टेक्निकल पढ़ाई BCA और BBA पढ़ने की ललक ज्यादा होती है?
0: पूरे बिहार से हमारे यहाँ, आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पिछले साल का अगर हम ब्यौरा अगर बताएं तो पिछले साल लगभग 1100 एडमिशन्स हुए थे। उन 1100 एडमिशन्स में लगभग बिहार का कोई भी ऐसा छोटा से छोटा कस्बा भी नहीं है जो अछूता रहा हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के जो बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, जो छोटे गाँव शहर से जो आते हैं, कई बार उनको ये लगता है कि हम मतलब बड़े शहर में जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, और पटना में कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा पहला ही ये जो वर्कशॉप जो होता है वो यही होता है कि हम बच्चे के झिझक को कैसे हटाएं। यानी कि अगर आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपको स्मार्ट बना के हम रखेंगे। आपको शुरू के 2-3-4 महीने में आपको खुद के अंदर तब्दीली होती हुई नज़र आएगी, सो दैट कि आपको आगे चलकर के अपने पाठ्यक्रम को खूब अच्छे तरीके से कर सकें। और आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, जब आप 3-4 महीने के बाद भी वापस घर जाएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बदलाव आप में महसूस करेंगे।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, आशीष आदर्श जी आर्केड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। युवाओं के लिए हम बातें कर रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और BCA और BBA पिछले 27 वर्षों से ये संस्थान अपने साथ लेकर चल रहा है, युवाओं में पठन पाठन करवा रहा है और रोजगार भी अच्छे खासे संख्या में लोगों को मिला है। अगर आप भी BCA और BBA की तरफ सोच रहे हैं तो एक बार बात करना चाहिए। और नंबर नोट करें, 7520800800। आशीष जी एक बात बताइए, नहीं रुकिए, उससे पहले हम बताएं कि आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर और सगुना मोर में है। हाँ आशीष जी एक बात बताइए, जब गांव से बच्चे निकलकर शहर में आते हैं, चकाचौंध देखते हैं, तो उन बच्चों या युवाओं कह लें, उनको संस्थान में क्या देखना चाहिए, कौन सा मानक है और क्या आर्केड बिजनेस कॉलेज उस सभी मानकों पर उतरता है?
0: देखिए एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसा स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीज़ें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने BCA किया या BBA किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है, जॉब कितना परसेंटेज। अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, अभी तकरीबन पिछले महीने 2026 के प्लेसमेंट्स की बात मैं करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं, लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में। और बाकी अभी कंपनियाँ, 4-5 कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्जाम के बाद हम, परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है पार्ट 3 की, रिजल्ट भी अब 1-2 दिन में आने वाला है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज लाइनअप कर रही हैं, वो आ रही हैं। और हम ये बात ये आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
1: वाह बहुत खूब, आपने बेबाकी से सब कुछ कह दिया। हाँ आपने कह दिया कि स्टूडेंट आए

0: जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं संस्थान के, उसको देखें, उनसे बात करें, उनका फोन नंबर लें और फिर संस्थान के बारे में जानकारियां लें। इसके अलावा एंड ऑफ द डे रोजगार बहुत मायने रखता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छा रोजगार चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ना, तो इसके विषय में भी आशीष जी ने बताया कि आर्केड बिजनेस कॉलेज की क्या स्थिति है। यही दूसरे कॉलेज में भी आपको देखनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि बीसी और बीबीए के लिए आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं। 27 वर्षों से लगातार हाँ आप लोगों के लिए खड़ा है। और संकोच नहीं कीजिएगा, नंबर हम दे रहे हैं, एक बार फोन से बात कीजिए, वक्त निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अच्छे संस्थान का चुनाव कीजिए और हम समझते हैं कि ये आर्केड बिजनेस कॉलेज, जिसकी तरफ से ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। नंबर नोट करें, 7520800800, 7520800800। और अब आगे बढ़ते हैं। आशीष जी, अगर हम टीचर्स की बात करें तो आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है। आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज़ देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहाँ जाकर रिव्यूज़ देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज़ देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
0: जरूर होगी विश्वसनीयता आर्केड बिजनेस कॉलेज की, क्योंकि आप लगातार लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है बीसी और बीबीए के लिए। हम नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 7520800800, 7520800800। फोन करने में मत झिझकिचाइएगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। कहते हैं ना कि ये बुनियाद है आपकी, इसको मजबूत कीजिए और जीवन में फिर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए आशीष जी, 27 वर्षों का लंबा अनुभव है आर्केड बिजनेस कॉलेज के साथ बीसी और बीबीएम के लिए, कैसे बच्चों को इंटरमीडिएट के जो साइंस हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, कैसे बच्चों को ये बीसी और बीबीए की पढ़ाई चुननी चाहिए, क्योंकि कोर्स का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, आपका अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है, वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है। और एनालिसिस अगर आपकी जो जो आपकी स्किल अगर है, तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है, तो आप बीसीए ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
0: तो समझ में आ गई कि का करे के, हाँ, कौना कौना स्टूडेंट कौना कौना सब्जेक्ट लेवे के या पढ़ाई करे के, हाँ, सही चुनाव ही आपको करियर में आगे ले जाएगा। उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, 27 वर्षों से युवाओं के लिए टेक्निकल पढ़ाई का प्रबंध करने वाली संस्थान आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से आप बीसीए और बीबीए कर सकते हैं। नंबर है 7520800800, यानी 7520800800। आशीष जी, कहते हैं ये आर्केड बिजनेस कॉलेज के अलावा भी आप टेक्निकल पढ़ाई का आपका हब है, खास करके कंप्यूटर से रिलेटेड, क्या कहेंगे?
1: देखिए, आर्केड ग्रुप के ऑल टुगेदर 3 कॉलेजेस है, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़, और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ, ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहाँ पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहाँ चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं।
0: थैंक यू आशीष जी, ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले शनिवार को जब हम कार्यक्रम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा साथियों, चाहे बीसीए या बीबीए कीजिए, अब पैसे की भी चिंता नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ आर्केड बिजनेस कॉलेज में भी ये सुविधा है। बहरहाल हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी मत गवाइए, संस्थान का चुनाव ठीक से कीजिए। नंबर दे रहा हूँ आगे से, फोन करके पता कीजिए, नंबर है 7520800 7520800, ये नंबर है आर्केड बिजनेस कॉलेज का। तो आज का उड़ान कार्यक्रम खत्म करने की राजेश को दीजिए इजाजत। थैंक यू आर्केड बिजनेस कॉलेज की, इस साल भी आपने ये सिलसिला जानकारियों का जारी रखा है। नमस्कार।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा में कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म डंकी से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, इरशाद कामिल ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म स्त्री टू का ये गीत। इस गीत को गाया है वरुण जैन और शिल्पा राव ने, संगीत है सचिन और जिगर का, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: Some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
2: कर लो।
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनिए फिल्म बवाल का गीत। इस गीत को गाया है लक्ष्य कपूर और सुवर्णा तिवारी ने। कौसर मुनीर ने इसके बोल लिखे हैं। आकाशदीप सेनगुप्ता का म्यूजिक है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं। प्रीतम का संगीत है।

0: choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km, and running costs of under ₹1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म मिले ना मिले हम का ये गीत। राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ है। जावेद अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं। साजिद वाजिद का संगीत है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक

0: विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया।

0: died after relentless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारे के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ्फुज और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अल-अक़वामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बर आजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवाइल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरका मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुँचेंगे, जहाँ आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शुबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदन में अख़वाम मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमाकारों CEOs और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मनक़द की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्को तबादला ख्याल में दिफा, मसनू जानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कान हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ब्रिटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुस नुमाया तौर पर नजर आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाय मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तकम करने में भी मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि अवाम से अवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत सलवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। ब्रातिस्लावा से आकाशवाणी के लिए समिति पुलुरिथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फिजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फिजाई अमले के 5 अफराद जां बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है। भारतीय फजाइया ने जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 5 अग्निवीरों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और वकार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुल्क उनके साथ है। उन्होंने मुतासर होने वाले सोगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक्किदा 5 रोजा ब्रिक्स जरी कॉन्फ्रेंस आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इंदौर आलामिया मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। इस एलामिया में खुराक की यकीनी फरहमी, किसानों की बहबूद, माहौलियात की मुआफिक काश्तकारी, ज़रई तिजारत और डिजिटल ज़राअत से मुतालिक अहम फैसलों को उजागर किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी ज़रई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है। उन्होंने कहा कि इंदौर आलामिया सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नए इदाराजाती इकदाम का ऐलान किया गया। पहले इकदाम के तहत कुदरती और पायदार काश्तकारी पर मुश्तरक तहकीक के लिए महारत के मराकज का नेटवर्क कायम किया जाएगा जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कलीदी रोल अदा करेगा। दूसरे इकदाम के तहत मस्नूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी को काश्तकारी में मुतारफ कराने के लिए ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क कायम करना शामिल है जिसमें IIT दिल्ली तावन करेगा। तीसरे इकदाम के तहत बीजों से मुतालिक किसानों के हकूक के तहफ्फुज़ और बीजों के रिवायती अकसाम के तहफ्फुज़ के लिए एक आलमी फोरम कायम किया जाएगा। चौथे इकदाम के तहत रुकन ममालिक के दरमियान ज़रई मालूमात और जीनियाती वसाइल के इश्तराक की खातिर ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क कायम किया जाएगा।
3: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल के दौरान मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी, इख्तरा और स्टार्टअप्स की एक नए कल्चर को फरोग दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के नतीजे में भारत आज दुनिया भर में आला तालीम का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला मुल्क बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में मस्नूई जहानत की सलाहियत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स कायम हो चुके हैं जिसके बायस भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बनकर उभरा है। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क ने हुनरमंदी के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की का मुशाहिदा किया है और 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत फराहम की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांव से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तिराअत और तहकीक विकसित भारत की असास हैं। जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत

0: टेक्नोलॉजी और ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान कही। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि उनकी वजारत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ रोजगार वजह करने पर जोर दे रही है। जनाब गडकरी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की कयादत में पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को उजागर किया। जनाब गडकरी ने बताया कि सड़क नकलो हमल और शाहराहों की वजारत ने मुल्क भर में ड्राइविंग के लिए तरबियती मराकज कायम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इन मराकज से तकरीबन 10 लाख अफराद तरबियत हासिल कर चुके हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रूनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम भारत की सकाफती रिवायत का जश्न मनाने और इसे फरोग देने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत के सकाफती सफर में नुमाया तरक्की हुई है। हुकूमत ने कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। इन इकदाम ने अवाम में मुल्क के सकाफती विरसे के हवाले से फख्र और वाबस्तगी के जज्बे को मजबूत किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर, महाकाल लोक प्रोजेक्ट, माँ कामाख्या मंदिर की असर नौ तामीर और तरक्की, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मोदी हुकूमत की नुमाया कामयाबियाँ हैं। म्यूजियम ग्रांट स्कीम के तहत मुल्क के सकाफती ढांचे को मजबूत बनाया गया है। इस स्कीम के जरिए 21 नए अजायब घर कायम किए गए हैं, जबकि 23 मौजूदा अजायब घरों को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है। वक्त के साथ ये स्कीम नागालैंड में सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए एक अहम सहारा बनकर उभरी है। इसी तरह कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट भी वजारत सकाफत के अहम प्रोग्रामों में शामिल हो गई है, जो मुल्क भर में सकाफती सरगर्मियों की मुआवनत कर रही है। मणिपुर की सबसे कदीम थिएटर तंजीम मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन नई माली इमदाद मिलने के बाद कई नए थिएटर ड्रामे पेश करने की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए तंजीम के सेक्रेटरी सोरो खैबम सरस चंद्र ने इलाकाई फनून के फरोग के लिए मजबूत माली मुआवनत फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
2: इस बेदारी की खास बात से हमें सकाफत की वजारत से मुख्तलिफ किस्म की माली इमदाद हासिल हुई। सकाफती इमदाद के तहत हमें इस साल 1.25 लाख रुपए मौसूल हुए हैं। हमें मंजूर शुदा रकम का 75% हासिल हुआ है। मैं भारत सरकार और सकाफत की वजारत का शुक्र गुजार हूँ।
1: ने अपने सकाफत के तहफ्फुज़ और इसे दुनिया भर में मुतारफ कराने के लिए अहम इकदाम किए हैं। आज भारत की भरपूर सकाफती रिवायत न सिर्फ मुल्क के अंदर रोशन है, बल्कि अपनी रोशनी दुनिया भर में भी फैला रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाली बैन अल-अक़वामी सूरत हाल ने पेट्रोलियम के शोबे में चैलेंजों में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कीमतों में इस इजाफे से मुल्क के शहरियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
3: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ बढ़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल? पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
0: आज लुधियाना में मीडिया से बात करते हुए जनाब पुरी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 12 साल मुद्दत खिदमत को अवाम मरकोज और तरक्यात पर मबनी करार दिया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को फौजी अमले का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वो इस महीने की 30 तारीख से अपना ओहदा संभालेंगे। वो इस वक्त फौजी अमले के नायब सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फौजी अमले के मौजूदा सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने ओहदे से इसी रोज सुबकदोश हो रहे हैं। वजारत खारजा ने इसराइल की वजारत खारजा की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक खिदमात अंजाम देने वाले भारत के वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात के लिए तशक्कुर का इजहार किया। پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की ये यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अविज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की, और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
2: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
3: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने

योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में यह निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौती

0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको एक मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। साहब स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो डेढ़ मिनट करने वाला बच्चा ही एक मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
0: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
1: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
0: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
1: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
0: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
1: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
0: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
1: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
0: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

0: योग्यताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत कभी उफनती कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड, अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में, जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की, इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम, क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है, जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब

0: वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें। तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
1: सारे आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
1: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है।
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेड अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
1: हाँ, वो
2: 500
1: लोग
2: रुपये एक फैमिली के कंट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
0: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं
1: तो अभी आप लोगों ने
0: एक
1: क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं जब कवर्स का जिक्र
0: जी
1: आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं
1: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
0: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव डेट।
1: जैसे भी आपने
0: हाँ
1: एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
0: जी
1: आपने एक नया
0: जी
1: टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नज़रिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैकेयी का प्रसंग, कि कैकेयी के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद

अली अकबर खां ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद, बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Aditala.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग हंसध्वनि। Continuing his recital, यू शिव प्रसाद now presents another composition based on राग नवरस कानड़ा। Composition निन्नु वीणा रामा, composed by त्यागराजा, is set to रूप

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।